0: मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बने शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बा काय राम राव सांगा सांगा
1: कोकिया मैना कबूतर
0: नहीं रे बाळानो छोकरा तुम जानता है बोलो कोंबडी का पिल्लू।

0: जद्दोजहद अभी भी जारी है। कल का दिन भारत के लिए पदकों के लिहाज से भले ही वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे, लेकिन खेल हो या जिंदगी, कभी कभी एक दिन का नतीजा पूरी कहानी नहीं बयां करता। कभी एक छोटी सी आवाज बड़ी लहर बन जाती है और कभी एक छोटी सी जिद बड़े बदलाव की वजह। इसी भरोसे के साथ भारतीय खिलाड़ी भी आज फिर उतरेंगे मैदान में, क्योंकि बड़े मुकाबले हमेशा ताकत से नहीं जीते जाते। कभी कभी लगातार खड़े रहने का हौसला ही इतना होता है कि हालात को भी अपना रुख बदलना पड़ता है। आइए जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के तीसरे दिन क्या कुछ घटा।
1: इन बॉक्सिंग, हरियाणा सचिन सिवाच, अ फॉर्मर यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मेडलिस्ट, स्टॉर्म्ड इनटू द राउंड ऑफ 16 इन द मेंस 60 केजी वेट कैटेगरी। सिवाच कंफर्टेबली डिस्पैच्ड कनाडाज कियोमा अली अहमदीय, अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फ्रॉम बर्मिंगहम, 4-1, यूजिंग हिज हाइट एंड टेक्निक to great advantage. The win moves Sivaj into the pre-quarterfinals, where he will face the tough challenge of England's Will Hewitt.
0: लॉन बॉल्स खेल शायद भारत में बहुत जाना पहचाना नहीं है, लेकिन इस बार दुनिया इस खेल में भारत का नाम जरूर सुन रही है। गेंद धीरे चलती है, मुकाबला धैर्य से जीता जाता है और भारत लगातार अपने निशाने पर पहुंच रहा है। शुरुआत करते हैं वुमेन पेयर्स से, जहां पिंकी और रूपा रानी चिरकी की जोड़ी ने लगातार 3 मुकाबलों में जीत हासिल कर अपनी नॉकआउट राउंड तक पहुंचने की उम्मीदों को बुलंद कर दिया है। कल खेले गए मुकाबले में टोंगा से आने वाली मिलिका नेथन और पेरिस बेकर की जोड़ी को इन्होंने हराया। पिंकी और रूपा दोनों ही 2022 की उस टीम का हिस्सा थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वो मुकाबले आउटडोर यानी नेचुरल ग्रास पर खेले गए थे, इस बार के मुकाबले इंडोर्स यानी कारपेट वाली घास पर खेले जा रहे हैं, जिसके लिए पिंकी बताती हैं उन्होंने लंदन जाकर खास तैयारी की।
2: जितने भी हमने तैयारी पहले करी है या 22 में भी जो हमने हिस्ट्री क्रिएट की थी वो ग्रास पे थी और हमेशा ग्रास पे हुआ है। इट्स अ फर्स्ट टाइम ये इंडोर हो रहा है। इसके लिए जो हमें चाहिए थी फैसिलिटीज, जो टाइम चाहिए था जितना, और जो टेक्निकल चाहिए थे, हमारे मैनेजर का सपोर्ट चाहिए था, वो सब हमें मिला है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, होपफुल कि हम हिस्ट्री दोबारा क्रिएट करें। तो बस हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग दीजिए।
0: दूसरी तरफ अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे 43 साल के पुतुल सोनोवाल मेंस सिंगल्स में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने कनाडा के रायन बेस्टर, जो कि आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें हराया। दूसरे मुकाबले में पिछड़ने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। हालांकि कल पुतुल को एक कड़े मुकाबले में मलेशिया के इज्जत जुल्केप्ले के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पुतुल नॉकआउट राउंड में पहुंचने की दौड़ में बने हुए हैं। पुतुल देश के लिए मेडल लेकर आना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ पुतुल के साथ खुद भी हुआ।
3: बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है। कोशिश करूंगा कि इंडिया को मेडल देने के लिए। पहले लॉन बॉल असम में ऐसा कोई जानकारी नहीं था, लेकिन 2022 में जब इंडिया ने पहली बार वुमेन फोर्स में गोल्ड मेडल जीता तो वहाँ पे असम का भी एक मेंबर था जो लॉन बॉल इवेंट का फर्स्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन नयनमणि सैकिया। उसके बाद असम में अभी लॉन बॉल का ऐसे माहौल हो गया है कि सबका टारगेट है सभी प्लेयर को कॉमनवेल्थ गेम खेलना।
4: अब बात करते हैं 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल की। शनिवार को भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था जब महिला 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम ने वेल्स के खिलाफ अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया। हालांकि मैच के नतीजे ने ये साफ कर दिया कि इस स्तर पर चुनौती कितनी बड़ी है। वेल्स ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पूल बी के इस मैच में 16-1 से एक तरफा जीत दर्ज की। भारतीय टीम वेल्स की आक्रामकता और स्कोरिंग की रफ्तार का सामना करने में संघर्ष करती नजर आई। टीम शुरुआत में ही पिछड़ गई और फिर इस अंतर को कवर नहीं कर पाई। वेल्स ने शुरुआत से अंत तक मैच पर पकड़ बनाए रखी। वहीं भारतीय टीम अपने 12 प्रयासों में से सिर्फ एक को ही पॉइंट में बदल सकी, जहां रीना गुप्ता ने भारत के लिए एकमात्र अंक बनाया।
0: महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की ये राष्ट्रमंडल खेलों में पहली उपस्थिति थी। पहली बार इस बड़े मंच तक पहुंचना ही अपने आप में एक जीत है। और बताते हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन।
5: It's very important for us to embrace all sport that has got medals at the international level and to see wheelchair basketball not only flourish but to be able to field the team in the Commonwealth Games is heartening indeed. They are inspirations and they are pioneers as well. This team will inspire a lot of others.
4: Team अब इस शुरुआती मैच से तेजी से सीख लेकर प्रतियोगिता में

0: तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी ताकि जब वो नाइजीरिया के विरुद्ध 27 जुलाई को कोर्ट पर लौटे तो एक मजबूत प्रदर्शन कर सके।
1: In women's artistic gymnastics, the quartet of Nishka Agarwal, Pranati Nayak, Ishita Rivale and Pratishta Samanta represented India in the team finals. Alas, they could not secure a medal. However, by the virtue of their performances, Ishita Rivale and Pratishta Samanta were able to register themselves as the reserves for the individual finals, which will take place on Sunday.
0: स्विमिंग की बात करें तो शनिवार को पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स में भारत के दो तैराकों दक्षिण शशि कुमार और आर्यन नेहरा ने हिस्सा लिया। टोल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में दक्षिण ने अपनी रेस 3:58.09 में पूरी की, जबकि आर्यन ने 4:02.6 का समय क्लॉक किया। कुल 27 तैराकों के बीच दक्षिण 15वें स्थान पर रहे, जबकि आर्यन उनसे एक पायदान पीछे 16वें स्थान पर रहे। हीट से सिर्फ शीर्ष 8 सबसे तेज तैराक को ही फाइनल में जगह मिलती है, इसलिए दोनों में से कोई भी भारतीय फाइनल में जगह नहीं बना सका। दोनों आज 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में एक बार फिर से एक्शन में दिखेंगे।
1: आइए अब बात करते हैं कि रविवार यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन कौन कौन से खेलों पर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी। सबसे पहले वेट लिफ्टिंग, जिसमें मीराबाई चानू मंच पर उतरेंगी, बारबेल सामने होगा और करोड़ों निगाहें उन पर।
2: इंडिया विल बी फील्डिंग अ वेरिटेबल लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट इन वेट लिफ्टिंग टुडे एट द एसईसी आर्मेडिलो एज मीराबाई चानू कम्स आउट टू डिफेंड हर क्राउन। द टू टाइम चैंपियन इन द 48 kg इवेंट इज द अनडिस्प्यूटेड हेडलाइनर ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड व्हेन फिट चानूज एबिलिटी पुट्स हर हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट इन द फील्ड। द टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट विल फेस अ स्टर्न चैलेंज फ्रॉम लिफ्टर्स belonging to Canada and Papua New Guinea, but her personal best is above the field and she is the favorite to finish on top of the CWG podium once again.
3: हमारी टीम पूरा तैयारी अच्छे चल रही है, हम पूरा कोशिश करूंगी कि इंडिया के लिए हम मेडल दें। ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं एशियन गेम्स में क्या क्या होगा, क्या और चेंज कर सकते हैं, वो सब देखने का अभी टाइम मौका मिलेगा। तो ज्यादा फोकस मैं एशियन गेम्स में ही रखूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है कि 2 महीने ही बचा है, तो मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखूंगी।
2: Chanu comes into the Commonwealth Games after agonizing fourth place finishes in the Hangzhou Asian Games and the Paris Olympics. G. Rajaraman on Chanu's preparation.
4: She should start as the favorite in the 48 kilo class. There is no doubt about that. She's the Commonwealth champion from last year. People will definitely expect her to do well in the Commonwealth Games. She's been very keen on doing well in the Commonwealth and in the Asian Games. So she has been very conservative in her preparation. She's not competed in too many big events. So she's been smart, so I expect her to be on the podium for sure. I think she's most likely to win gold. In fact, her coach has said that they're not even looking to do 90 kilos in snatch. That perhaps will come in the Asian Games, right. And they know that they can win gold even without being at your 100%.
2: In the men's 60 kg category, fellow Manipuri Rishi Kanta Singh, the 2025 Commonwealth Championships gold medalist, comes into the Glasgow Games with realistic podium ambitions. He is not new to the CWG, having participated in 2022 in Birmingham in the 55 kg weight division. Meanwhile, Muthu Pandi Raja, hailing from Tamil Nadu, has come back to the sport after several years in the wilderness through injuries. He won silver in the 2025 Commonwealth Championships and is the current national champion, where he lifted a massive 302 kgs to win gold. This makes him a strong medal contender in the 65 kg weight category.
1: फिर नजरें होंगी बॉक्सिंग रिंग पर। बॉक्सिंग में एक पंच मुकाबला बदल सकता है, लेकिन रिंग में टिके रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं कलेजा चाहिए, जिसका परिचय दिया जादूमणि सिंह ने परसों हुए मुकाबले में। पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में जादूमणि सिंह ने परसों राउंड ऑफ 32 में मेजबान टीम के एरन कलन को सर्वसम्मति से यानी 5-0 से हराया था।
5: Bang bang.
1: वही जज्बा लेकर रविवार को SEC सेंटर में जादूमनी एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में उनका सामना आर्च राइवल पाकिस्तान से है। सामने होंगे पाकिस्तान के सुमैमा रहमान, और हर एक पंच के साथ कहानी बदलेगी। क्या अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमनी सिंह एक बार फिर इस चुनौती के सामने खरे उतरेंगे?

0: ऐसा ही जज्बा लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना डेब्यू करने पहुंचे हैं आदित्य प्रताप यादव। पहले राउंड में इनको बाय मिला, जिसके चलते पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ये सीधा राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। लेकिन राउंड ऑफ 16 में चुनौती कड़ी है, क्योंकि सामने है युगांडा के नुहू बाटे। इन द वुमेन्स डिविजन ऑन संडे ऑल आईज विल बी ऑन प्रीति, हु हैज हैड अ फैंटास्टिक ईयर इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। शी डिफीटेड अ 3-time वर्ल्ड चैंपियन टू सिक्योर द गोल्ड मेडल। शी विल बी गनिंग टू रिपीट दोज हीरोइक्स at the Commonwealth Games too. In the 54 kilogram weight category, she will be up against Debra Mtenje of Malawi.
1: Moving on to lawn bowls, India have a busy day at the Scottish Events campus, as in the afternoon today, Ruparani Tirki and Pinky Singh take on Namibia's Dinah Willian and Amanda Steenkamp in a women's pairs Section B contest. Having defeated the world champion in his campaign opener, Putul Sonewal faces Malta's Sean Parnas in a must-win Section D contest in the men's singles.
0: फिर चलेंगे जिम्नास्टिक्स की ओर, जहां हर छलांग, हवा में उड़ता शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा मुजाहिरा किया जाता है जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं। यहां शरीर की हर हरकत कला बन जाती है और एक छोटी सी चूक बरसों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। भारत की पुरुष टीम भले ही मेडल ना जीत पाई हो, लेकिन इंडिविजुअल प्रतियोगिता में तपन मोहंती और योगेश्वर सिंह फाइनल राउंड तक पहुंच गए हैं। यहां अच्छा प्रदर्शन उनको पोडियम पर ला खड़ा कर सकता है और करोड़ों भारतीयों की यही उम्मीदें होंगी कि तपन और योगेश्वर दोनों ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए जिम्नास्टिक्स में भारत को मेडल दिलाएंगे।
1: Let's now turn our attention to swimming, as India's leading male swimmers will combine forces in the men's 4x200 meters freestyle relay at Tolcross Swimming Center. Srihari Natraj, Anish Gowda, Aryan Nehra and Dakshin Shashikumar are scheduled to compete in the heats in the evening today. Srihari brings considerable international experience to the quartet. In a relay, individual speed must come together with well-timed changeovers, and India will first look to secure a place in the final, scheduled for later tonight from a very tough field.
2: Australia topped the current medals tally with a grand total of 23, including 12 gold. England are second with 15 medals, while Nigeria are third with 6. India, meanwhile, with 1 bronze, are right now in joint 10th. Today, Indian athletes will set the Glasgow chill ablaze once again with every lift, every stroke and every uppercut as the quest to bring glory to the nation continues at the 22nd Commonwealth Games.
1: फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल हम आपके साथ वापस राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ इसी वक्त पर जुड़ेंगे। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी और संपादक वंदना के साथ मैं मेघा सिन्हा और दर्पण टिकिया आपसे लेते हैं इजाजत।
3: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
4: मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे एफएम रेनबो वाहिनी। आत्ताच आपण ऐकलात राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा इथल्या ठळक घडामोडी, आणि आता ठीक 7:45 अगदी काही क्षणात आपण ऐकू शकाल अज्ञात मुंबई या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाचा 76वा भाग अगदी काही क्षणात।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
6: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
7: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल

0: डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPA ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPA ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH U.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मुंबई। वेलकम टू 107.1 FM रेनबो। 8:40 दिखा रही है घड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए कभी भी कहीं भी 24/7। मस्त मुंबई में इस मस्त मस्त बारिश भरी सुबह में आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, उठ जाइए क्योंकि इट्स टाइम टू वेक अप।

0: up. Akashwari FM Rainbow.
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर
3: पीएम जय, अब गरीबों की जय बन गई है।

उठ भी जाओ अभी। हैप्पी संडे मुंबई, 107.1 एफएम रेनबो पे आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई और इस आपके यम्मी लिशियस एंटरटेनमेंट से भरे ब्रेकफास्ट शो में आज क्या है खास? बहुत सारी चीजें, बिल्कुल मतलब एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठी है स्टूडियो में कौन। मैं हूँ आपकी आशना और मैं आपके साथ बने रहूंगी पूरे 11 बजे तक। 10 बजे तक क्या है खास बताऊं, अभी से बता दूं? चलिए ठीक है, दिन विशेष की बात तो करेंगे साथ ही साथ, आज चूंकि संडे है हम बात करते हैं, चलिए चलते हैं पर्यटन की। देश भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, कहाँ जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, किस समय जा सकते हैं। अब चूंकि ये तो संडे लास्ट वाला है जुलाई का, तो जुलाई के बारे में बात नहीं करेंगे, अगस्त सितंबर में क्या है खास, कौन से त्यौहार हैं, कौन कौन सी जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं और इस खूबसूरत हरी भरी बारिश का जो है वो मजा ले सकते हैं, उसके बारे में तो बात करेंगी। साथ ही साथ आप ठीक 9:30 पे सुन पाएंगे हमारा खास कार्यक्रम वतन का राग, पूरे 30 मिनट का ये कार्यक्रम, और 10:05 पे मेरी बातें, आपकी बातें, जो हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज मेरे साथ बातें करने के लिए मुझे इतनी खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए, हमारे साथ जुड़ जाएंगे रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर MA अफराज जी। बहुत सारी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें जो है वो हम करने वाले हैं ठीक 10:05 से। तो आपका जो है संडे पूरा का पूरा जो है वो सेट हो चुका है। अब चूंकि दिन विशेष की बात की थी, तो जिन लोगों को याद है उन दिनों की बात है, बहुत दिन, बहुत बहुत बहुत दिन पहले की बात है, या कहूँ बहुत सालों पहले की बात है। 26 जुलाई है आज, 26 जुलाई 2005 को कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी जो मुंबई है वो पानी में आप कह सकते हैं मग्न हो गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक घर नहीं पहुंच पाए थे, धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल, हर तरह एक दूसरे की मदद करते हुए, लिफ्ट लेते हुए घर पहुंचे थे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसे याद नहीं करना चाहते, पर हमें ये सोच के से याद करना चाहिए कि वो एक ऐसा दिन था या वो एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा हफ्ता था जहाँ मुंबई के सारे लोगों ने जो है अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। जो लोग

रास्तों में से चलते चलते घर जा रहे थे, लोग जैसे पॉसिबल हुआ वैसे मदद कर रहे थे, और इन सब को बहुत खूबसूरत तरीके से, ये सारी स्ट्रगल्स को अगर मैं कहूँ, दिखाया था एक फिल्म में जो आई थी 2009 में। उसी का टाइटल ट्रैक सुनेंगे, उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें। कहीं मत जाइए, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। हम हैं म्यूजिकली योर्स।

मस्त मुंबई में वेलकम बैक। और ये वाला गाना जो है ना वो मेरी तरफ से आप सभी के लिए, क्योंकि तुम मिले, आप मिले, बहुत दिनों बाद मिले, तो मिल गया ये जहाँ सब कुछ मिल गया। 107.1 FM रेनबो पे ट्यून इन किया हुआ है आपने मस्त मुंबई, जहाँ पे इंफरटेनमेंट से भरा ये शो आपसे बात हो रही है दिन विशेष की। नहीं, और बात नहीं करूँगी 2005 की, लेकिन हाँ बात जरूर करेंगे अगस्त और सितंबर के बारे में। लेकिन किंतु और परंतु उससे पहले उन सभी को गुड मॉर्निंग जिन्होंने बड़े प्यार से ढेर सारे मैसेजेस हम तक पहुंचाए हैं। विजेंद्र, राकेश, पंकज, रजनीकांत, दीपा, फिरोज, विजय, प्रमोद, विश्वास, अंजू, प्रदीप, सुरेश, माधव, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और आपको बता दूं कि पूरे 11 बजे तक जो है वो मेरा और आपका साथ बना रहेगा। कुछ ऐसे ही मज़ेदार वाले जो गाने हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। एंजॉय कीजिए और बने रहिए FM रेनबो के साथ, क्योंकि हम हैं म्यूजिकली।

अमित त्रिवेदी की आवाज, और ये आवाज आपकी आशना की जो बने रहेगी पूरे 11 बजे तक आपके साथ। मस्त मुंबई सुन रहे हैं आप 107.1 FM रेनबो पर। केदारनाथ फिल्म से आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना, और इसे सुनाने के लिए ऐसे कारण की तो जरूरत नहीं है, लेकिन

क्योंकि आज है संडे और संडे को मस्त मुंबई में हम बातें करते हैं। आ चल के तुझे कहीं तो ले चलें, है ना। चलिए साथ में चलते हैं। अगस्त जो है ना, अगस्त में भारत आने का मतलब है एक तरफ प्रकृति की गोद में सुकून, शांति, हरियाली हरियाली, और दूसरी तरफ त्योहारों की जो लाइवलीनेस है, जो खुशी है, जो अपनापन है। और आप सोचेंगे ये 26 जुलाई को अगस्त की बात क्यों कर रही है, तो जो अभी अभी जागे हैं आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं जी, क्योंकि ये लास्ट संडे है, उसके बाद जो है बस ख़त्म ही हो रहा है ना जुलाई। तो अब जो बीत गया वो बीत गया, अब आने वाला जो महीना है उसके बारे में बात करेंगे ना। अगस्त का महीना जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सावन का या भाद्रपद महीना जो है उसके नाम से भी जाना जाता है, और ये वाला जो समय जो है वो भगवान शिव की भक्ति का है। लाखों करोड़ों जो कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेकर मीलों पैदल चलते हैं, और इस समय जो देवघर हैं और जो धाम हैं काशी विश्वनाथ तक, पूरा देश जो है वो शिवमय हो जाता है। तो इसीलिए इसी बात पर एक प्यारा सा खूबसूरत सा गाना जो है वो केदारनाथ का, वो आप तक पहुँचा है। उसके साथ साथ और एक बढ़िया सा गाना जो है वो पहुंच रहा है। कैलाश खेर की आवाज़, आप कहीं मचाइए, बने रहिए FM रेनबो के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं दिल से दिल तक।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां जो लफ्जों
1: म्यूजिकली योर्स। बिल्कुल, वेलकम बैक टू 107.1 FM रेनबो। ब्रेक के बाद बात हो रही है अगस्त महीने की, क्योंकि हम जो हैं चल पड़े, हाँ आज चल के तुझे कहीं ले चले। 9:17 दिखा रही है घड़ी, ठीक 9:30 पे आप सुन पाएंगे खास कार्यक्रम वतन का राग। 10:00 होंगे हिंदी में समाचार और 10:05 पे होगी एक खास मुलाकात, मेरी दिल से तो निकली है मेरे दिल मेरी बातें, क्योंकि संडे की ये सुबह है। हम बात करने वाले हैं विंग कमांडर एम ए अफराज जी के साथ, जो है रिटायर्ड इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर। बहुत सारी खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें जो आपका इंतजार कर रही हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना एफएम रेनबो के साथ, क्योंकि हम जो हैं वो जुड़े हुए हैं दिल से दिल तक। अगस्त की बात हो और हाय बारिश की बात हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। इस समय जो है पूरे के पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में इतनी सारी हरियाली है, उसके साथ साथ इतनी सारी सुंदरता है। आप उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर्स चले जाइए जो फूलों की घाटी है, हजारों तरह के सैकड़ों तरह की जो हैं वो वहाँ फूल खिल रहे होते हैं। या फिर आप दक्षिण की तरफ चले जाइए, दक्षिण भारत में अगस्त और सितंबर में कुछ खास त्यौहार भी मनाए जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ की जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, जो नौका दौड़ होती है, वो भी इसी समय के आसपास होती है। आप उस हिसाब से प्लान करके भी जा सकते हैं इसे देखने के लिए। दुनिया भर से जो लोग हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं, इसके साथ साथ रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस। तो अगस्त जो है इतनी सारी खूबसूरत चीज़ों से जो है भरा हुआ है, कहते ना एक उम्मीद से भरा हुआ है। देश का जो हर कोना है वो देशभक्ति से, भक्ति से और प्रकृति के रंगों से जो है एकदम आहा वाह सुन के और सोच के जो है ऐसे एकदम खूबसूरती जो है एकदम सामने आ गई। और चूंकि केरल की बात की, दक्षिण भारत की बात की, तो कई सारी ऐसी हिंदी फिल्म भी हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से केरल के अलग अलग लोकेशंस पे जाके जो शूटिंग हुई और वहाँ की सुंदरता जो हम तक पहुँचाई, फिर चाहे वो 1995 की बॉम्बे हो, 2007 की गुरु हो जिसका गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, या फिर परम सुंदरी हो जो हाल ही में आई, 2025 में आई है, खूबसूरती जो है वाह वाह देखने लायक। इसी बात पे, चूंकि बारिश का मौसम भी है, श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुनेंगे अगला गाना ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

श्रेया घोषाल, उदय मजूमदार की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म गुरु से। बरसो रे मेघा, बरस रही है तो अच्छा लग रहा है, इसलिए बरसने दीजिए। 107.1 FM रेनबो पे आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई। 9:25 दिखा रही है घड़ी। आज बहुत सारी 8:40 से लेके अभी तक जो हमने ढेर सारी बातें की, अगस्त के बारे में बातें की, आने वाले त्योहारों के बारे में बात की, जहां हम जा सकते हैं घूमने के हिसाब से, दिन विशेष की बात की, और दिन विशेष में एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत बड़ा और बहुत खास दिन 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 26 जुलाई को भारतीय सेना की साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की याद में ये दिन जो है मनाया जाता है। इसी दिन 1999 में भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय के तहत घुसपैठियों को खदेड़कर कारगिल की चोटियों पर जो है वो तिरंगा फहराया था। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे सारे भारतीय सेना के जवानों को, सभी को हमारा नमन। और इसी बात पे हम सुनते हैं बड़ा प्यारा सा गाना, बी प्राक की है आवाज़, फिल्म का नाम केसरी। ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि बाबा कांशीराम का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 11 जुलाई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मोहन साहू। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

दी। किसी ने परिवार का स्नेह, किसी ने सुख सुविधाओं का संसार, तो किसी ने अपने प्राणों का अमूल्य उपहार। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित करने नहीं निकले थे। उनका तो एकमात्र स्वप्न था कि भारत स्वाधीन हो, भारत आत्मगौरव से आलोकित हो। एक ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे मणिलाल मूलाशंकर पंड्या। एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने मौन समर्पण के साथ स्वाधीनता यज्ञ में अपनी आहुति दी और अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया। मणिलाल पंड्या का जन्म 20 जुलाई सन 1911 को गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मूलाशंकर पंड्या था। ये 20वीं सदी का उदय काल था। गुजरात का ऐतिहासिक नगर पाटन उस समय गायकवाड़ राजवंश की छत्रछाया में अपनी सांस्कृतिक चेतना को संजोए हुए था। इसी नगर के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में उनकी परवरिश हुई। पिता ने उन्हें धर्म, मर्यादा और विद्या के संस्कार दिए। पराधीन भारत की दशा से उस समय के युवा अत्यंत आक्रोशित थे। बड़ौदा रियासत की प्रगतिशील शिक्षा नीतियों और महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने पाटन के युवाओं में एक मूक चेतना भर दी थी। मणिलाल पंड्या ने जब होश संभाला तब उनके कानों में तिलक जी के स्वराज की हुंकार गूंज रही थी, गांधी जी के आंदोलनों का आमंत्रण गूंज रहा था और उनके भीतर एक संकल्प जाग चुका था कि उनका जीवन देश हित में समर्पित होने के लिए है।

मणिलाल पंड्या ने देश की पुकार पर अपने मित्रों के बीच स्वदेशी का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया था। वो स्वदेशी और स्वराज का मंत्र लिए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ किया। 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से ये सत्याग्रह आरंभ हुआ। गांधी जी ने दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ की, जो 24 दिनों तक चली और 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून भंग के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक दांडी मार्च का प्रभाव पूरे भारत में हुआ और गुजरात तो इसके केंद्र में ही था, इसलिए गुजरात की धमनियों में राष्ट्रवाद का रक्त उबल रहा था। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने मई सन 1930 में ब्रिटिश नमक कर के विरुद्ध धरसाना सत्याग्रह की योजना बनाई। ये स्वाधीनता संग्राम का महत्वपूर्ण अहिंसक विरोध था। दरअसल गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 21 मई सन 1930 को सरोजनी नायडू और इमाम साहब के नेतृत्व में 2500 सत्याग्रहियों ने धरसाना नामक डिपो की ओर शांतिपूर्ण मार्च किया। ये धरसाना नमक कारखाने पर शांतिपूर्ण छापे की योजना थी। ब्रिटिश दमन चक्र चला। जब इन सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठियां बरस रही थीं, तब गुजरात के स्वयं सेवकों के जत्थे में मणिलाल मूलाशंकर पंड्या अग्रिम पंक्ति में सीना ताने खड़े थे। पुलिस की लाठी बरसती जा रही थी और महात्मा गांधी की जय का नारा बुलंद होता जा रहा था। सैकड़ों लोग घायल हुए। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए इस घटना को दुनिया के सामने उजागर किया और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की वैश्विक चर्चा के साथ ही ब्रिटिश शासन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। धरसाना सत्याग्रह ने मणिलाल पंड्या को ब्रिटिश शासन की नजरों में ला दिया। उन्होंने पाटन के स्थानीय बाजारों में घूम घूम कर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इसके साथ ही शराब की दुकानों के सामने धरनों का कुशल नेतृत्व किया। अंग्रेजी हुकूमत उनकी गतिविधियों से बौखला उठी। उन्होंने मणिलाल पंड्या को गिरफ्तार कर साबरमती सेंट्रल जेल में डाल दिया। एक अहिंसक योद्धा जेल के लोहे की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जेल में उसे अनेक यातनाएं दी गईं, लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत कर दिया।

से रिहा होने के बाद मणिलाल पंड्या का संकल्प और भी फौलादी हो चुका था। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में स्वाधीनता आंदोलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था, जहां एक ओर ब्रिटिश भारत था, वहीं दूसरी ओर देसी रियासतें थीं। पाटन बड़ौदा रियासत का अंग था, जहां उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर बड़ौदा राज्य प्रजामंडल तीव्र गति से सक्रिय हो रहा था। मणिलाल पंड्या जानते थे कि किसी भी बड़ी क्रांति के लिए संगठनात्मक मजबूती आवश्यक है। उन्होंने पाटन तथा मेहसाणा के सुदूर ग्रामीण अंचलों का व्यापक दौरा किया। उन्होंने शोषित किसानों से संवाद किया, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया और रियासती करों के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य में उनके सहयोगी थे कर्मठ स्वाधीनता सेनानी माणिकलाल मगनलाल शर्मा। दोनों ने मिलकर स्थानीय युवाओं का एक ऐसा अभेद्य नेटवर्क तैयार किया जो खादी, छुआछूत उन्मूलन और राष्ट्रीय शिक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने लगा। सन 1942 में बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया। ब्रिटिश हुकूमत ने शीर्ष नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन दिशाहीन न हो जाए, इस चिंता से अनेक नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को हवा दी। पाटन में इस आंदोलन की कमान संभाली मणिलाल पंड्या जैसे नायकों ने। भूमिगत रहते हुए उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। इस तरह पाटन और मेहसाणा का संपूर्ण क्षेत्र रातों रात गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। मणिलाल पंड्या ने देशभक्ति पत्रिकाओं और बुलेटिनों के संपादन तथा वितरण का कार्य अत्यंत सतर्कता के साथ गुप्त रूप से किया। अंग्रेजी व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए उन्होंने सरकारी डाक, टेलीग्राफ लाइन और रेलवे पटरियों को बाधित करने वाले कई गुप्त अभियानों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। जब अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत रहते हुए संचालन कर रहे थे, तब उत्तर गुजरात तक उनके संदेशों और रसद को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने का काम मणिलाल पंड्या ही कर रहे थे। मुखबिरों की सूचना पर ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उन्हें भारी मात्रा में प्रतिबंधित साहित्य के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन्हें अत्यंत कठोर कारावास में शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनका आत्मबल अजेय रहा। देश में आजादी की सुबह आने तक वो सलाखों के पीछे ही रहे। अंततः देश आजाद हुआ। उनकी आंखों में संतोष और खुशी के आंसू थे। उन्हें सत्ता या पद का कोई लालच नहीं था। वो एक मूक कर्मयोगी की तरह अपनी जड़ों की ओर लौट आए। वो जीवन के अंतिम क्षणों तक खादी भंडारों के माध्यम से स्वावलंबन का मंत्र देते रहे तथा निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु तन मन धन से समर्पित रहे। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhi

ndnd@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम वतन का राग। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल।
2: म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। सुबह के 10 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस दिन ऑपरेशन विजय की सफल और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही ने कहा है कि उन्होंने रणनीतिक लाल सागर बंदरगाह शहर हुदैदा पर सऊदी अरब के हवाई हमले के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इससे प्रमुख नौवाहन मार्गों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। और अंत में खेल जगत से, भारत की युवा स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त। प्रोग्राम नमस्ते भारत के लिए बने रहिए FM रेनबो के साथ। म्यूजिकली योर्स, वेलकम बैक टू 107.1 FM रेनबो। 10:02:05 दिखा रही है घड़ी और प्रोग्राम शुरू हो गया है नमस्ते भारत, जहां पे बातें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आज दुगुनी खुशी के साथ बातें होंगी क्योंकि मेरे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत ही जल्द इस गाने के उस पार एक बहुत ही खास शख्सियत। जी हाँ, आज आप और मैं, हम सब मिलकर बात करने वाले हैं विंग कमांडर MA अफराजी से, जो है रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। और हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बढ़िया उनके एक इनिशिएटिव की, जिसका नाम है

रंग देवीर 2026 जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑन अ पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा। बहुत सारी बातें, कब, कहां, कैसे, क्यों, सब कुछ जो है वो होगा, लेकिन इस गाने के उस पार। कहीं मत जाइए, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। हम हैं म्यूजिकली योर्स।

0: फिल्म बॉर्डर 2 से आपने सुना मोहित चौहान भी प्राग की आवाजों में, ये खूबसूरत सा गाना हिंदुस्तान मेरी जान। 10:06 दिखा रही है घड़ी और नमस्ते भारत में टाइम हो गया है कि बातें करें, ढेर सारी बातें करें, बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी अच्छी बातें करें। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे बहुत खुशी, बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन कराते हुए। आज अगले आधे पौने घंटे तक हम बातें करने वाले हैं विंग कमांडर एम ए अफराज जी से, जो है रिटायर्ड इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर और वो जो है ओनर है ऑनर प्रिंट वेबसाइट के। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा जो है एक कॉम्पिटिशन, एक इनिशिएटिव जो है शुरू किया है। तो चलिए उन्हीं से बातें करते हैं ढेर सारी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग आशना, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले मैं AIR FM रेनबो के श्रोताओं को मेरा नमस्कार और जय हिंद।
0: जय हिंद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कारगिल विजय दिवस की ये सुबह और ज़्यादा खूबसूरत हो गई जब आपके साथ जो है वो मैं बात कर पा रही हूँ। और अगले कुछ मिनटों तक जब हम बात करेंगे ढेर सारी चीज़ों के बारे में, मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं खुद इतनी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद जो है उसमें पहुँच गई हूँ। बट जो है हम कहते हैं ना कि मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती। सर शुरू से शुरुआत करते हैं, जो हमारे लिसनर्स अभी जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पे जुड़ चुके हैं विंग कमांडर अफराज जी। इज़ अ रिटायर्ड इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर, ही इज़ करेंटली बेस्ड इन बैंगलोर और वो बैंगलोर से हमारे साथ यहाँ टेलीफोन के जरिए जो जुड़े हैं। साथ ही साथ सर आपको बता दूं कि पूरी दुनिया भर में लोग हमें इस समय सुन पा रहे हैं हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए। तो सर आपकी जो जर्नी रही है इंडियन एयरफोर्स में एंड आपकी फैमिली, यू बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ ज्यादातर लोग जो हैं हमारी जो सर्विसेज को जो है सर्व कर चुके हैं, एंड दैट्स सच अ प्राउड थिंग, तो आप उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए।
1: जी मैं एक्चुअली मैं इंडियन एयरफोर्स में था, 25 साल मैंने भारतीय वायुसेना में सेवा की और मेरे पिताजी भी आर्मी में थे और मेरा जन्म एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था औरंगाबाद में, जो आजकल संभाजीनगर है, महाराष्ट्र से मेरा कनेक्शन है। और मैं पला बड़ा मिलिट्री कंटोनमेंट्स में और मेरी पत्नी भी एयरफोर्स में थी, मेरे ब्रदर इन लॉ, काफी मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आर्म फोर्सेज में उन्होंने सर्विस की। जी
0: बहुत बहुत खूबसूरत। एंड मैं इस दिन पे मैं कहती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा भावुक भी हूँ, साथ ही साथ मैं कह रही हूँ जैसे एक्साइटेड भी हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड अ वेरी बिग थैंक यू फॉर सर्विंग द नेशन, फॉर कीपिंग अस सेफ ऑल दिस वाइल। सो बिग बिग थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सर हम एक ऐसे करते हैं, मैंने अपने लिसनर्स को बताया कि अगले आधे घंटे जो हम आपसे बातें करेंगे उसके बीच में कुछ प्यारे प्यारे से गाने जो आने वाले हैं वो होंगे आपकी पसंद के, जो चुन चुन के जो है आपने सुंदर सुंदर गाने हमें जो पहुंचाए हैं। तो नमस्ते भारत प्रोग्राम में हम बातों का सिलसिला यूं ही चलाते रहेंगे, बट चूंकि हमने वायुसेना का जिक्र किया और हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी और उनके एक बहुत बड़े इनिशिएटिव से जुड़ी एक बहुत प्यारी सी फिल्म आई थी कुछ साल पहले, अक्षय कुमार उसमें लीड रोल में थे, उस फिल्म का एक गाना मैं प्ले करूंगी, उसके बाद बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कहीं मत जाइए, बने रहिए FM रेनबो के साथ, हम हैं म्यूजिकली योर्स।

0: जितनी बार भी ये गाना सुनती हूँ, जितनी बार भी हम ये सोचते हैं और ये कहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, क्या आप कभी ये बैठ के सोचते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया? सबसे बेसिक, सबसे सिंपल चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है सिविक सेंस। यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना है, शोर नहीं करना है, बिना वजह किसी को परेशान नहीं करना है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर सब मिलजुल के करते रहेंगे ना, तो हम खुद ही अपने देश को, अपने भारत को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। इसी बात पे चलते हैं, बातों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं विंग कमांडर रफरा जी, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। वेलकम बैक सर ऑन 107.1 FM रेनबो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
1: धन्यवाद
0: सर। हम बात कर रहे थे आपकी फाउंडेशन की, जिसके आप ओनर हैं, ऑनर प्रिंट फाउंडेशन की, और उसका एक बहुत खूबसूरत सा एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है रंग दे वीर। उसका 8th एडिशन सर चल रहा है, या मैं कहूँगी आज से शुरू हो रहा है, एंड इट गिव्स अस रियल प्लेजर एंड ऑनर टू इंट्रोड्यूस इट टुडे ऑन एयर। तो सर, इसके बारे में बताइए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और 26 जुलाई से 15 अगस्त, यही अवधि जो है वो क्यों चुनी गई इस प्रतियोगिता के लिए, इस कॉम्पिटिशन के लिए?
1: तो मैं पहले बता दूं आपको, ऑनर पॉइंट फाउंडेशन जो है, हम 3 उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं। पहला है कि हम हर शहीद की कहानी को देशवासियों के सामने लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक ऑनलाइन संग्रहालय बना रहे हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है आज। जो जितने देश के शहीद हुए हैं 1947 से लेकर आज तक, जितने शहीद हुए हैं उनके बारे में जानकारी, तो एक पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि किस तरह से इस जानकारी को हम लोगों तक पहुंचाएं विभिन्न विभिन्न माध्यमों के द्वारा। और तीसरा उद्देश्य है कि किस तरह से इन शहीद परिवारों की हम मदद करें, अन्य जितने कई संस्थाओं के साथ मिलकर। तो जो दूसरा उद्देश्य है, जिसमें हम इन शहीदों की जानकारी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके अंतर्गत हम ये रंग दे वीर जो इवेंट है हमारा, उसका आयोजन करते हैं हर वर्ष। ये 8वां संस्करण है, पिछले 7 साल से हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं
0: जी।
1: और इसमें हमारा जो उद्देश्य वो है कि हम चाहते हैं देश के बच्चे शहीदों के बारे में जानें, उनके प्रति उत्सुकता पैदा हो, उनके प्रति जागरूकता पैदा हो, और उनके बारे में जानकर उनसे प्रेरणा लें, ताकि वो भी देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित हों, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित हों। ये हमारा उद्देश्य है।
0: बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। और सबसे प्यारी बात कि आपने आज का दिन चुना इसकी शुरुआत के लिए, और इसका जो अंतिम दिन है इस प्रतियोगिता का, वो 15 अगस्त का दिन है। तो आई एम श्योर कि बहुत ही सोच विचार करके, विमर्श करके आज के इस दिन को जो है आप लोगों ने चुना होगा।
1: इतिहास के जो ये दिन है, ये स्वर्णिम दिन है, कारगिल दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो आप जानते ही हैं
0: जी।
1: तो ये सिर्फ स्वर्णिम दिन ही नहीं है, बल्कि स्मरणीय दिन है, और हम चाहते हैं कि बच्चे जो है इन दिनों की महत्वता को जानें, इनको हमेशा याद रखें, और ये जो दिन है ये शहीदों से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हमने इन दोनों दिन का चयन किया है।
0: बहुत बहुत उम्दा सर। सर एक और, चूंकि हम रंग दे वीर के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत ही खास बात यह कि 7 साल से ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीके

0: से जो है चलता चला आ रहा है। ये इसका 8वां संस्करण है और इस साल की सर जो थीम है, अगर आप उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहें तो।
1: जी, इस वर्ष की थीम है मातृभूमि। तो मातृभूमि जो है, ये जो एक सैनिक होता है और मातृभूमि का एक बहुत ही अटूट संबंध होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है
0: जी।
1: और ये ऐसा बंधन होता है, ऐसा रिश्ता होता है जिसके लिए एक सैनिक अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। तो ये मातृभूमि जो थीम है, इसलिए हमने इसका चयन किया है। इसको दर्शाते हुए जो बच्चे हैं वो इसको दर्शाते हुए उसके ऊपर, इस विषय पर अपना जो पेंटिंग बनाएंगे और उसका जो सारा किस तरह से उसका इसको सबमिट करना है, उसके सारे जो दिशा निर्देश हैं वो हमारे लिंक पर दिए हुए हैं।
0: बिल्कुल सर, और उसके बारे में भी हम और चर्चा करेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से गाने के लिए जो आप ही ने चुना और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना है मुकेश जी की आवाज़ में वो है। उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कौन इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, कोई एज ग्रुप है, किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है, बहुत सारी और बातें। आप सब बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। हम जुड़ने वाले हैं आपके साथ एक छोटे से गाने के उस पर, पहले एक छोटा सा ब्रेक, फिर एक गाना और फिर हम जुड़ेंगे विंग कमांडर अफराजी के साथ। कहीं मत जाइए, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। हम हैं म्यूजिकली यर्स।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: मुकेश जी की आवाज में आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना और ये आवाज आपकी आशना की जो आपके साथ बने हुई है नमस्ते भारत प्रोग्राम में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विंग कमांडर अफराज जी जिनकी पसंद का ये खूबसूरत सा गाना जो है आपने सुना। सर आपने ये गाना क्यों चुना? बहुत बहुत ज्यादा अभी जिज्ञासा हो रही है कि इतने सारे खूबसूरत गानों में से ये वाला गाना है क्यों?
1: एक्चुअली जो हमारा अंडरलाइन फिलॉसफी है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों की मदद करें
0: जी,
1: है ना, दूसरों को खुश करें और जो भी आप कर सकते हैं दूसरों के लिए कुछ करें, तो मेरे हिसाब से जो आपका जीवन सार्थक जब भी होता है जब आप थोड़ा अपने लिए जिए और थोड़ा दूसरों के लिए, और ये गाना है ना उसको दर्शाता है एक्चुअली, वो जो वो भावना है वो कन्वे करता है ये गाना।
0: बहुत बहुत ही सुंदर बात सर, और यही चीज और यही बातें जो हैं जो ऑनर पॉइंट फाउंडेशन की जो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से एक ऑब्जेक्टिव मैं कहूँ उसमें भी आता है कि जहाँ आप उन सभी सैनिकों के परिवारों के साथ भी काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत प्यारी चीज़ है। सर अब बात करते हैं रंगदेव वीर के बारे में, और जहाँ पे हम एक्साइटेड तो हो गए हैं बहुत कि एक ये कॉम्पिटिशन है, तो कौन इसमें सब पार्टिसिपेट कर सकता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताइएगा, कैसे रजिस्टर करना है वो तो आपने बताया ही है, हम जो है हम प्रोग्राम के अंत में जो है वेबसाइट की लिंक भी दोबारा से हमारे सारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए अनाउंस करेंगे, साथ ही साथ सर आप बताइए इसके डिटेल्स के बारे में।
1: तो ये जैसे मैंने बताया ये सभी बच्चों के लिए है जो किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक भारत में जितने विद्यालय हैं उन सभी बच्चों को आमंत्रण है हमारा, और कक्षा 1 से लेकर 12 तक, और ये दो कैटेगरी में है, दो श्रेणी में ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जो जूनियर श्रेणी कक्षा 1 से कक्षा 6 तक और सीनियर श्रेणी कक्षा 7 से कक्षा 12 तक और 18 वर्ष तक के आयु के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। इनके अलावा जो किसी कारणवश बच्चे सामान्य विद्यालय में नहीं पढ़ सकते हैं
0: जी,
1: किसी कारणवश जो कई जो बच्चे हैं वो ओपन स्कूल्स में पढ़ते हैं, ओपन स्कूलिंग एक सिस्टम है जो NIOS करके है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है जिसमें करीब करीब 25 से 30 लाख बच्चे इंडिया में उसमें पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा स्पेशल चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जिनको दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, करीब करीब 3,500 स्कूल्स हैं इंडिया में जिसमें करीब करीब 20 लाख दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने 10 जो पुरस्कार हैं उसका आरक्षण किया हुआ है, 10 पुरस्कार स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए हैं, तो वो भी भाग ले सकते हैं। और उसके अलावा एनसीसी कैडेट्स
0: जी,
1: जो करीब करीब 10 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं इंडिया में जूनियर डिवीजन में, जो स्कूलों में एनसीसी कैडेट्स हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल हमें इंसेंटिव दिया है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 रुपए का अतिरिक्त राशि जो हमने उसका प्रावधान किया है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे पहला जो पुरस्कार इसमें है 35,000 रुपए का, और अगर वो बच्चा एनसीसी कैडेट है तो उसको 5,000 रुपए अतिरिक्त राशि दी जाएगी, लाइक दैट मीन्स 40,000 रुपीज का फर्स्ट प्राइज मिलेगा अगर वो एनसीसी कैडेट है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एनसीसी कैडेट्स को प्रोत्साहन मिले और जो दूसरे बच्चे हैं वो प्रेरित हों एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा एक बुक्स का गिफ्ट दिया जाएगा सभी विजेताओं को, तो ये है उसके रूल्स रेगुलेशन, और जो रूल्स रेगुलेशन वो सब दिए गए हमारे लिंक में जैसे मैंने बताया honorpoint.in रंगदेवी, और इसको हमने 10 भाषाओं में जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए 10 भाषाओं में, ताकि सभी बच्चे दूसरे किसी भी देश में किसी भी प्रदेश में रहते हों, अन्य विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, वो भी इन इन नियमों को समझ सकें और इसमें पार्टिसिपेट कर सकें।
0: सब वो कहता है ना कि समावेशिता इंक्लूसिविटी का एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो अभी हमने देख लिया, हर तरह से हर जगह से जो है हर प्रकार से बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने प्राइजेस के बारे में बताया सर, जो पुरस्कार बच्चों को मिलेंगे, मेरा जो इंटरेस्ट था वो जैसे ही आपने कहा कि बुक्स मिलेंगे किताबें मिलेंगी, और मैं सोच रही थी कि काश कुछ साल पहले जब मैं इस एज ग्रुप में थी तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती, लेकिन सब बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव, नाम भी उतना ही प्यारा रंगदेवी। मुझे एक बहुत टाइम से मन में एक ये सवाल उठ रहा है सर, जब आप देखते हैं कि ये कंपटीशन जो है ये कला से जुड़ा हुआ है, ये आर्ट से जुड़ा हुआ है, तो भारत के शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आपने कला का माध्यम क्यों चुना, ये ख्याल कैसे आया?
1: जी ऐसा है कि कला एक भावनाओं को अभिव्यक्त करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है
0: जी।
1: और कई बार ये माध्यम शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जब बच्चे इसमें अपनी भावनाओं को इसके द्वारा व्यक्त करते हैं तो वो उससे पहले उनके शहीदों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, फिर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, फिर अपने विचारों को कला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए वो लोग जान पाते हैं। इसलिए तो वही हमारा एक उद्देश्य है कि वो जाने, इनको पहचाने, इन शहीदों को, और उनसे प्रेरणा लें। और दूसरा कारण ये है कि कला की कोई भाषा नहीं होती। देखिए हमारे देश में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं
0: जी।
1: तो हम चाहते हैं कि बच्चे किसी भी प्रदेश से हों, कोई भी भाषा बोलते हों, कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हों, वो अपने आप को, अपनी जो उनके विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर सकें। और कला ही एक ऐसा माध्यम है, तो इसलिए हमने इस माध्यम को चुना।
0: बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है। और जी हाँ, जहाँ सोशल मीडिया इतने ज़्यादा चरम पे है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसके बीच में स्क्रीन से दूर होकर इतनी खूबसूरत चीज़ पे पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्व होना और उसके बारे में जानना, मैं समझती हूँ कि रंगते वीर एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ युवा विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना भी विकसित होगी, उसके साथ साथ एक क्यूरियोसिटी भी, वो जानने की जो एक लालसा होती है वो भी जरूर जो है वो विकसित होगी। सर इसी बात पे एक छोटा सा गाना, प्यारा सा गाना आप ही की पसंद का हम सुनते हैं, और उसके उस पार कुछ और बातें करेंगे इस प्रतियोगिता के बारे में, कुछ और आपके इनिशिएटिव्स के बारे में। तो अब हम हमारे लिसनर्स को बता दें कि अगर आपने रजिस्टर करना है, आपके स्कूल्स ने, आपके बच्चों ने, द बेस्ट पार्ट इज जो हम बात कर रहे थे कि आप एज एन इंडिविजुअल, यानी आपके आसपास आपके घरों में अगर बच्चे हैं जहां पे स्कूल्स शायद पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, तो आप एज एन इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जो है onpoint.in/rangdevi2026। तो आपने बस इतना सा करना है, उस वेबसाइट पे जाना है, आपको सारी डिटेल्स जो है पता चलेंगी। चलिए रुकते हैं गाने के लिए, और गाने के उस पार सुनेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें दिल से दिल तक।

0: आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, चल रहा है प्रोग्राम नमस्ते भारत, जहाँ पे बातें हो रही हैं बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मैं कहूँ बहुत बहुत ही ज़्यादा बताई देती हूँ, चलिए इंस्पायरिंग भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ऐसे प्यारे से इनिशिएटिव की जो पिछले 7 सालों से चल रहा है, उसका 8वां संस्करण है। बात हो रही है रंग देवी 2026 की और मैं बात कर रही हूँ विंग कमांडर फराज जी के साथ। सर, वेलकम बैक टू 107.1 FM रेनबो, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
1: थैंक यू
0: सर। हम बात कर रहे थे इस कंपटीशन की, हम बात कर रहे थे कैसे और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो चूंकि ये कंपटीशन है तो लोग एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि पुरस्कार में, प्राइज में जो है कि क्या मिलने वाला है, तो और जजेस कौन होंगे सर, कौन है जो हमें बताएंगे कि सबसे अच्छी पेंटिंग जो है, सबसे अच्छी ड्रॉइंग जो है वो किसने बनाई है?
1: हाँ जी, तो एक तो जजेस के बारे में बता दूं पहले कि हमारा निर्णायक मंडल जो है उसमें 8 सदस्य हैं, जिसमें कि 4 जो हैं वो शहीद परिवारों के सदस्य हैं और उस और जो बाकी 4 हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं, जैसे एक लेखिका हैं और एक संस्थापक हैं एक एनजीओ की और एक डायरेक्टर हैं स्कूल्स की और एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय कलाकार हैं, क्योंकि ये कला की प्रतियोगिता है तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार भी इसमें मौजूद है निर्णायक मंडल में। और इसमें जो पुरस्कार हैं वो पूरे जो पुरस्कार है वो 116 पुरस्कार हैं, 58 पुरस्कार हर कैटेगरी में। तो 2 कैटेगरी हैं, 2 श्रेणी हैं, जैसे मैंने बताया जूनियर श्रेणी और सीनियर श्रेणी, उसमें हर कैटेगरी में 58 पुरस्कार हैं टोटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 50 जो है सांत्वना पुरस्कार हैं। और हर विजेता को ऑथर्स साइंड बुक्स सेट मिलेगा जो मैंने बताया
0: जी।
1: और कैश प्राइजेस मिलेंगे, कैश प्राइज के अलावा जो है वो ऑथर्स साइंड बुक्स मिलेंगे। कैश प्राइज में पहला पुरस्कार 35,000 रुपए है
0: जी।
1: और सेकंड पुरस्कार जो है, दूसरा पुरस्कार है 25,000 रुपए का और तीसरा 15,000 रुपए का। इसके अलावा 5,000 रुपए के सांत्वना पुरस्कार हैं और एनसीसी कैडेट्स के लिए मैंने जैसे बताया 5,000 की राशि अतिरिक्त दी जाएगी, जो भी राशि है उसके अलावा इसके अतिरिक्त 5,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे एनसीसी कैडेट्स को। तो ये है टोटल और इसके अलावा 10 पुरस्कार हैं दिव्यांग।

0: बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा 5 पुरस्कार दोनों श्रेणी में, 5 पुरस्कार जूनियर में, 5 पुरस्कार सीनियर में दिव्यांग बच्चों के लिए। तो ये है टोटल उसमें जो पुरस्कार जो दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल्स के लिए भी पुरस्कार हैं
1: जी।
0: 2 पुरस्कार जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए सीनियर कैटेगरी में और 2 जूनियर कैटेगरी में फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होगा जिसमें इन स्कूल्स को आमंत्रण दिया जाएगा
1: जी।
0: इन स्कूल्स को ट्रॉफी दी जाएगी, सम्मान पत्र दिया जाएगा और सोशल मीडिया और हमारे वेबसाइट पे इनका उल्लेख होगा। ये है पुरस्कार स्कूल्स के लिए और बच्चों के लिए।
1: क्या बात है सर। और सर हम जब बात कर रहे थे मुझे पता चला है कि इस साल का आपका टारगेट है कि 50,000 से ज़्यादा स्कूल्स को इसमें शामिल करने का, इसमें सम्मिलित करने का। ये बहुत बहुत ही उम्दा बात है सर, जहाँ जितने ज़्यादा स्कूल, जितने ज़्यादा विद्यार्थी, उतने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा। और ये जो भावना है देशभक्ति की और जानने की हमारे सारे जो अनसंग हीरोज हैं उनके बारे में, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ये आगे बढ़ता जाएगा। सर बातें जो हैं वो हमारी ख़त्म तो होती नहीं है और ना ही होंगी, मन तो बहुत है कि ये चलते रहे, बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमें इतनी खूबसूरत चीज़ से रूबरू कराया जहाँ हमने बात की रंग दे वीर के बारे में, मातृभूमि के बारे में। सर जाते जाते ऑफकोर्स आखिरी गाना जो होगा वो आप ही की पसंद का बड़ा प्यारा सा जो है वो प्ले किया जाएगा, लेकिन आप अगर हमारे देश के युवाओं को, इन विद्यार्थियों को, बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज।
0: कि मेरा अनुरोध है कि जितने बच्चे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जितने माता पिता और शिक्षकगण और जो भी दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आप किसी बच्चों के संपर्क में हैं तो उनको इस अवसर के बारे में बताइए ताकि वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें और अपने जो शहीदों के प्रति कृतज्ञता है उसको अभिव्यक्त कर सकें कला के माध्यम से। और जो दूसरे युवा पीढ़ी है उसके लिए मेरा एक ही संदेश है कि जो हमारा देश है बहुत विशाल देश है, इसमें कई समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान जो सरकार नहीं कर सकती, हमें आगे बढ़ना है और हमें हर किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़ना है।
1: तो
0: हमें हम सबको राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है और उसमें बहुत राष्ट्र निर्माण बहुत बड़े शब्द लगते हैं लेकिन दो मैं आसान तरीके बताता हूँ। पहला, अच्छे नागरिक बनिए, सब नियमों का पालन कीजिए, दैट मीन्स यू बिकम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, दैट इज वन वे यू कैन सर्व योर कंट्री, दैट इज पहला। और दूसरा है कि किसी न किसी सामाजिक कार्य में जुड़ जाइए, किसी जो अपॉर्चुन मोमेंट का डे का उसका इंतजार मत कीजिए, किसी भी एज में हो आप, कितनी समस्याएं और कई जो संस्थाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहे गरीबी उन्मूलन की समस्या हो, शिक्षा की, पर्यावरण की, सड़क सुरक्षा, सफाई अभियान, हर कोई भी आप सामाजिक कार्य में जुड़ जाइए और इन दो तरीकों से आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं और यही हमारा उद्देश्य है इस ऑनर पॉइंट फाउंडेशन का।
1: सब बहुत बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। तो चूंकि आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि राष्ट्र निर्माण के लिए वी जस्ट नॉट नीड टू बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बट वी शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सम सोशल कॉज, तो सर मैं समझती हूँ कि इतने बड़े जो पार्टिसिपेशन के लिए या इतने बड़े प्रोग्राम के लिए, इतने बड़े इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत सारे वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो क्या हमारे लिसनर्स आपकी वेबसाइट पे जाके उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर किसी को वॉलंटियर बनना हो? तो ये एक और एडेड इन्फॉर्मेशन है कि एज अ स्टूडेंट अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी कर पा रहे हैं क्योंकि आप उस एज ग्रुप से बड़े हो चुके हैं थोड़े से, बट एज अ वॉलंटियर आप इस खूबसूरत से इस सोशल कॉज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय हमें दिया और इतनी प्यारी प्यारी, इतनी खूबसूरत, इतनी प्रोत्साहन भरी जो बातें हैं वो हमारे साथ की। हमारी पूरी टीम की तरफ से, एफएम रेनबो की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, रंग दे वीर 2026 को ढेर सारी शुभकामनाएं, विशिंग यू द बेस्ट 8th एडिशन ऑफ दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू एंड जय हिंद।
1: जय हिंद। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, नमस्ते भारत। और आज हमने बात की पिछले 40 मिनटों में इतनी खूबसूरत जो ये वार्तालाप हुई, इतना खूबसूरत ये डिस्कशन हुआ है, हमने बात की विंग कमांडर अफराजी से जो रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं, बैंगलोर में फिलहाल बेस्ड हैं। बैंगलोर से हमारे साथ यहाँ मुंबई जुड़े रंगदेवी 2026 के बारे में उन्होंने बात की, जिसकी जो थीम है, जिसका जो इस साल का विषय है वो है मातृभूमि। मैं आपको बता दूं, हमारे लिसनर्स को बता दूं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो कि है honorpoint.in

बजरंग देवी 2026, उस पे जाके इस कॉम्पिटिशन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको एज अ वॉलंटियर भी जुड़ना है तो उसकी जानकारी भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी रुकते हैं एक छोटे से गाने की ओर, जो विंग कमांडर अफराज जी की फरमाइश है, उनके फेवरेट लिस्ट में से एक है। आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, हम हैं म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। सुबह के 10:52 हो गए हैं। पेश है इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। समाचार में आगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। वहीं सरकार के साथ सहमति बनने के बाद CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। और अंत में खेल जगत से, भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, ठीक 10:55 पे आप सुन पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात और जनता से किया गया संवाद। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर

0: हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल

परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। दो तीन दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी

मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो,

या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है।

एक बैच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम

वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे मन की बात प्रोग्राम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनता से किए गए संवाद। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रेक फ्री।

हाय हेलो सत श्री अकाल वणक्कम केम चेक सकाय मुंबई, मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ और करने आई हूँ दिल की बात। दिल से बात निकलती है तो दिल तक ज़रूर पहुँचती, लेकिन बातें किस तरह से बोली जाए इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नहीं। आज का दिन खास भी है, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास और जिस खासियत की बात करी उसमें सबसे पहला नाम आता है कारगिल विजय दिवस। भारत जो स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को ये दिवस यानी कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं, सभी की मेमोरी में ये ज़रूर कहीं ना कहीं शामिल है कि हमारी सेना ने इस ओर कितने अच्छे से और कितने वीरता के साथ ये प्रमाणित किया था कि कारगिल पे हमारा यानी कि हमारा देश जो है उसकी सुरक्षा बनी रहे और उनके कंधे जब एक दूसरे से मिल गए तब ये दिवस मनाना हमने शुरू किया।

वेलकम बैक दोस्तों। और ऐसे कुछ गाने, ऐसे कुछ गीत जो दिल को छू जाते हैं और अंदर ही अंदर हमें देशभक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। बीच बीच में कई बार ज़रूरी नहीं है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही उन्हें सुना जाए, इन सब विजय दिवसों पर भी हम उन्हें ज़रूर याद करते हैं और हर बार धन्यवाद करते हैं अपनी सेना को। आज कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाओं के साथ पूरा देश उनके कामों पर उनकी वीरता को सचमुच नमन करता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई की जो तारीख है आज की, वो एक और बात के लिए बहुत खास है क्योंकि आज जो है वो मनाया जाता है नेशनल ट्री डे। कहाँ पर मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसको अब रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है और इसकी वजह से हमारे यहाँ भी वन महोत्सव होता है और अक्सर ही बहुत सारे संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में भी कई सारी प्लांटेशन के काम किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारी सोसाइटी में भी ये इनिशिएटिव लिया जाता है आज के दिन और प्लांटेशन किया जाता है, प्लांट्स का ध्यान भी रखा जाता है। ये नहीं कि शो ऑफ के लिए हमने दिखा दिया कि हम पर्यावरणविद हैं और बिल्कुल हमने लगा दिया, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। और इतना सुंदर एटमॉस्फेयर अगर हमारे आसपास हमेशा रहे, हमेशा हम किसी खूबसूरत वादियों में घूमते रहें, तो यकीनन मन प्रसन्नचित रहता है, मन शांत रहता है, डिसीज़न लेने की हमारी पावर जो है वो बढ़ जाती है। और जिसका मन खुश रहता है ना, वो हर बात को बहुत क्लियरली देख सकता है। हर वो मन जो परेशान है, जो कहीं भटका हुआ है, वो सिर्फ पर्यावरण के ज़रिए अपने रास्तों पर आ जाता है। आप मानते हैं या नहीं ये नहीं मालूम, मगर जो लोग घूमने जाते हैं उनसे अक्सर आप पूछेंगे ना, तो वो ये कहते हैं ना कि हम टेंशन फ्री होके आए हैं, अब हमसे बात करो, अब वो काम करते हैं चलो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके बाद जब हम ऐसे किसी पर्यावरण वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है या फिर जहाँ पर बहुत अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, नेचर बहुत सारा वहाँ देखने को मिल रहा है, वहाँ जाके हम फ्री फील करते हैं। और ये जो फ्रीडम होती है ना, ये हमको आगे के लिए तैयार करती है, यानी हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है, साथ ही साथ हमें सोचने समझने की क्षमता जो है ना वो विकसित भी कर देती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही रूप से। फिलहाल आपको एक खबर तो पता ही होगी, चिपको आंदोलन जो है वो फिर से हुआ था इसी मतलब इसी विषय पर, और रिसेंटली हुआ है ये एक और बार, और उत्तराखंड के जो 4000 से ज़्यादा ट्रीज हैं उनको बचा भी लिया था इसी के चलते। तो ऐसे सेव भी करते जाएंगे हम अपने पर्यावरण को, उसको बढ़ावा भी देते रहेंगे, तो यकीनन जो आज हम हवा में प्रदूषण की बात करते हैं या हम कुछ समस्याओं की बात करते हैं, तो ये एक अवसर मिल जाता है समाधान की ओर। आप क्या कहते हैं, लिख भेजिए 8657661071 पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे मैं हूँ आरजी नमिता और पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सैनिकों की वीर गाथा राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए कारगिल विजय दिवस उपलक्ष्य में वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। बारिश के पानी का प्रबंधन करने के अनेकों तकनीकों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। राष्ट्रकुल खेलों में तथा अन्य खेलों में युवाओं की शानदार सफलता पर उन्होंने बधाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में आज युवाओं की भारी भीड़ जमा हुई है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरी होने पर कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना 36 दिन का आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन ने परीक्षाओं में गड़बड़ी और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर लाखों लोगों को एकजुट किया था। अमेरिका ने ईरान पर लगभग 2 सप्ताह तक बमबारी के बाद हवाई हमले रोक दिए हैं। संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयास तेज हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने बताया कि रात भर कोई महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि नहीं हुई। इस घटनाक्रम से तनाव कम होने की उम्मीद है। हालांकि हॉर्मुज जल डमरू के आसपास स्थित अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं नमिता। पेश है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे, और म्यूजिक कैफे में मीठी मीठी बातें करनी है, मीठी बातें जो दिल को छू जाती हैं, मीठी बातें जो आपका एक स्थान बनाती है, मीठी बातें जिनसे बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं। बने रहिए यही एफएम रेनबो पर, दिल से दिल तक।

0: जी हाँ, गल मीठी मीठी बोलिए, मीठी मीठी बातें किसको अच्छी नहीं लगती। और मीठी बातों की बात करें तो कई बार हमारा मुद्दा तो बड़ा ही साधारण सा होता है, पर इस तरह से बोला जाता है कि सुनने वाला ध्यान से सुनने लगता है। ऐसा होता है ना, आपके साथ हुआ होगा कई बार बच्चों की प्यारी सी आवाज़ में आपने बहुत सारी ऐसी फरमाइशें सुनी होंगी जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इतने प्यार से बोलते हैं कि हम उन्हें पूरा करने की सारी कोशिशें करना शुरू भी कर देते हैं। सिर्फ मीठा बोलने से ये फर्क आता है। ये सिर्फ संप्रेषण का या संवाद का माध्यम नहीं है दोस्तों, भाषा जो होती है वो एक संस्कृति का, एक सभ्यता का आदान प्रदान भी है, एक मनोविज्ञान भी है, भविष्य का प्रश्न भी है। लव्ज ही ऐसी चीज है दोस्तों जो दिल को जीत भी लेती है और दिल को चीर भी देती है। मोबाइल का जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाए तो पूरा इंटरफेस ही बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही भाषा हमारे मस्तिष्क का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कुछ भी भाषा में गड़बड़ी होती है या हम अपशब्द बोलते हैं या उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो दिल को ठेस पहुँचाए किसी के, तो वाकई में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना बोला गया है संत कबीर ने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। जी हाँ, इन बातों को आज याद करने की और जहन में डाल के अपने व्यवहार में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बने रहिए, और आपका क्या विचार है भाषा को लेकर जल्दी से लिख भेजिए 8657661071 पर। मैं हूँ आरजी नमिता, आप सुन रहे हैं FM रेनबो म्यूजिक कैफे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

जी हाँ, हल्के हल्के बोले, हौले हौले बोले, बात को सीधा बोले, कैसे भी बोले, पर ऐसे लफ्ज़ ना बोले जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। बस यही कहना है। और हमारे बहुत सारे लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अपनी राय ज़रूर दे रहे हैं कि बोलते समय हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। कहते हैं कि बात ज़बान से और शब्द जो हैं वो तीर की तरह चुभ जाते हैं, इसलिए बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि किसके लिए हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल जी कहते हैं कि मनुष्य की सोच केवल तथ्यों से नहीं बल्कि उसकी भाषा की संरचना से भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि मातृभाषा में हम जो सोचते हैं अगर वही भाषा में हम जब व्यक्त करते हैं तो हमारा एक स्वाभाविक रूप सामने आता है, और जब हम दूसरी किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि आज की डिमांड भी है, हमें मल्टी लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, ज़्यादातर भाषाओं में हमें काम करना आना चाहिए, तो हम जब उनमें बात करते हैं तो वाकई में हम वो नहीं होते जो एक्चुअल में हम होते हैं। आप क्या कहते हैं? फिलहाल जो भी वे में हम बात करें, सीधा सरल सच्चा सुंदर रूप हर भाषा का दिल को छू जाता है, और ये स्वरूप ना हमें अपने गानों में भी दिखाई देता है। जहाँ बहुत खूबसूरत से बोल लिखे होते हैं जो मन को छू जाते हैं, वो बोल हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। वो गाने जिनके शब्दों में कहीं वो अपनापन नहीं फील हुआ, उन गानों की पूरी पूरे स्टैंजास हमें याद नहीं होते। होता है ना ऐसा? तो दिल के करीब भी वही गाने होते हैं जो मीठे होते हैं, जिनकी मीठी सी आवाज़ होती है, और साथ ही लिरिक्स भी बहुत दिल के करीब होते हैं। उसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, कई बार तो साइलेंस ही इतना कुछ बोल देता है कि बहुत बातें बोलने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, भाषा जो है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का वे है। ये जितना सीधा सरल होगा उतना ईजीली वो दूसरे को समझ में आएगा। जहाँ इसमें अपशब्द आते हैं तो एक दो बातें बहुत क्लियर हो जाती है। कहते हैं कि आपकी भाषा आपके एटीट्यूड को, आपके संस्कारों को प्रदर्शित करती है, तो भाषा में सुंदरता लेकर आना हम सभी का फर्ज है। मुद्दे तो बार बार उठाए जाते हैं, हर बार बोले जाते हैं। सो ऐसा ही एक नगमा जो कई सारे मुद्दे उठा रहा है और अपनी बात बड़े अच्छे कटाक्ष के रूप में बहुत सुंदर तरीके से बोल भी दे रहा है। आप तक पहुंचा रही हूँ ऐसे दो ब्यूटीफुल गाने जो इस तरीके के हैं, जिनमें बात तो कही गई है और इंटेंशन कुछ और है, लफ्ज़ में कुछ और बात है। ध्यान से सुनिएगा।

कमा कमा के मर गए सैया, मोटे सैया पतले सैया।

वाह भाई, क्या तरीका था, अपनी बात भी बोल दी और मज़ा भी आ गया। सैया से बात कर रहे हैं, वो किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे ही गाने होते हैं, और कई सारे गाने होते हैं जो बड़ी खूबसूरती से नोक झोंक के ज़रिए बोली जाती है, और ये गाना उनमें से एक है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

सकते हैं 8657661071 पर। फिलहाल हम जो कहते हैं कि बच्चे जो बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहला फिल्टर जो है पेरेंट्स लगाते हैं, उसमें वो तुतलाकर बोलते हैं तो उन्हें बार बार टोकना पड़ता है कि ये नहीं बोलना है। कई बार मूवीज़ में या कहीं सुने हुए शब्दों का इस्तेमाल घर पर हो जाता है जिसे आपत्तिजनक समझा जाता है और फिर से फिल्टर लगा दिया जाता है। ऐसा ही फिल्टर हम बाहर भी महसूस करें या लगाने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है कि ये अपमान हो रहा है, भाई हमें स्वतंत्रता है अपनी बात बोलने की। लेकिन पूरी स्वतंत्रता होने के बावजूद भाषा पर हमारा खुद का नियंत्रण, हमारे खुद का फिल्टर होना चाहिए। कहाँ क्या बात किसके लिए कैसे बोलनी है, इस बात का हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अपशब्द या अपमानजनक शब्दों से निकल जाने के बाद या बोलने से किसी का दिल अगर दुख जाता है तो उसके बाद सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो तीर है ना वो चुभ चुका होता है और ये इतना गहरा चुभता है कि क्या कहें। कई बार लोग कहते हैं ना कि लिखे हुए शब्द बहुत चुभ जाते हैं और बोले हुए शब्द उससे भी ज़्यादा। आप सही बात कर रहे होते हैं, कई बार आप बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए डांट रहे होते हैं और वो रिवेंज के हिसाब से आपसे जवाब तलब करते हैं। ये बात तो बहुत से टीनेजर्स की जो मदर होंगी वो ज़रूर महसूस करती होंगी कि ये इस तरीके से जवाब क्यों दे रहे हैं। असल में होता यही है कि बोलने का जो हमारा तरीका रहता है वो उनको उकसाता है हमें वापस से जवाब देने के लिए, और अगर हम माइल्ड बोलते हैं तो उनको कोई असर ही नहीं होता। तो बीच का कोई रास्ता, बीच का यानी जिसमें शब्द वाण की तरह चुभे भी नहीं और जो बात है वो जहन तक पहुंच भी जाए, ये एक आर्ट होता है, ये एक कला होती है। और इसे सब कोई तो नहीं सीख सकते, लेकिन हर उस व्यक्ति को सीखना चाहिए जो लाइफ की इन छोटी मोटी परेशानियों से गुजर रहा है और चाहता है कि इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकले, या फिर उनके आसपास के लोग उनकी बोली की वजह से नाराज़ हैं उनसे। तो कोशिश ज़रूर की जा सकती है कि अपनी बोली को सुंदर बनाएं।

दोस्तों, जब भाषा की बात होती है तो योगेश जी हमें लिखते हैं कि हमारा बोलने का तरीका कई बार आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के साथ कुछ अलग होता है, और अगर कोई आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है या किसी बड़ी पोजीशन पे है तो हमारी बात करने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा होता है, हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हम दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, लोग उनके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम इतने प्रभावित होते हैं कि हम भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे जेन्यून व्यवहार भी बोलते हैं कि इनके साथ तो देखो सबकी ऐसी ही बातचीत होती है क्योंकि यही ऐसे व्यक्ति हैं। फिर भी भाषा की बात की जाए और मान्यता की बात की जाए तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये मान्यताएं लेकिन आपकी भाषा में दिखाई नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक भाषा की, अंदाज की बात होती है, सरलता की बात होती है, तो हर वो व्यक्ति जो सिंपल है, जिसकी भाषा सरल है, सादगीपूर्ण है, वो किसी से भी बात करेगा तो उसका वही अंदाज सामने आएगा, उसकी आखिरी पहचान भी वही बनेगी जो उसके मुँह से निकली है। कहते हैं ना कि इसका फलाने की भाषा ज़रूर ख़राब है मगर इसका दिल बहुत साफ है। ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम किसी के दिल के अंदर झांक कर देख सकें। पहली बात जो हमारे सामने किसी चेहरे से निकल कर आती है वो होती है उसकी आवाज़, उसका अंदाज़, उसका बात करने का तरीका, उसकी भाषा, और यही उसकी पूरी एक छवि हमारे सामने बनाती है। कई बार बहुत खूबसूरत लोग होते हैं पर उनके अंदाज इतने ख़राब होते हैं, इस तरह से वो बात करते हैं कि बाकी जो उनके सराउंडिंग में रहते हैं उनकी खूबसूरती को नज़रअंदाज करके उनके बात करने के तरीके को लेकर उनसे नफरत करते हैं या चिढ़ते हैं या उनको जवाब नहीं देते हैं। तो इस तरह से अच्छी खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ ख़राब हो जाती है ज़रा सी भाषा की ऊंच नीच होने से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है ये, हमारी संस्कृति को बचाना है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी भाषा को भी बचाना होगा। हमारे गुरु थे, उनका कहना था कि जो लोग व्यक्तियों पर चर्चा करते हैं वो शिक्षित होते हैं, और जो लोग घटनाओं पर बात करते हैं वो अर्धशिक्षित होते हैं, और जो लोग विचारों या समस्याओं पर बात करते हैं, समाधान पर बात करते हैं, वो पूर्ण शिक्षित होते हैं।

इसलिए मीठा बोलिए, टू द पॉइंट बोलिए। जहाँ चुप होना है वहाँ मौन हो जाइए और मौन को बोलने दीजिए। जब काम हाथ जोड़कर हो जाता है तो कड़ू या कड़वे या कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, किसी को आहत मत कीजिए। सिर्फ आपके और मेरे लिए ली गई सीख नहीं है ये, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात उनके जहन में भी डालनी है, जिससे एक शब्द से सुंदर समाज की हम स्थापना कर सकें। जैसे हमारा यानी आकाशवाणी का एक ध्येय है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय पे हम काम करते हैं, तो बिल्कुल यही बात वाणी की जो सुंदरता है वो कहती है। अगर आप बहुत सो का हित और बहुत से लोगों का सुख बनाए रखना चाहते हैं, अपना ऑरा जो है वो पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो पहले अपने मन के भीतर किसी भी नफरत को ख़त्म करना होगा, दूसरा अपनी वाणी पर आपको काम करना होगा, हमें काम करना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा।

इसी गीत के साथ म्यूजिक कैफे का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, बने रहिए हमारे यानी कि FM रेनबो के साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ, और हिट एंड हॉट जो आपका फेवरेट प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप भी जल्दी से अपना वाला गाना जो है लिख के भेज दीजिए 8657661071 पर, और हम बिल्कुल आपके गाने बैक टू बैक लगा के रखते हैं। संडे का दिन है, फंडे का दिन है, और संडे वाला गाना रेडी है क्योंकि मालेगांव से अमित भगत जी ने इसकी फरमाइश की है। और भी बहुत सारी फरमाइश है, और हमारा सवाल इस गाने के उस पार। बने FM रेनबो के साथ।

जी हाँ, संडे फंडे होता है और फंडे के लिए आप क्या विशेष प्रोग्राम रखते हैं ज़रूर लिख के भेजिए 8657661071 अपने फेवरेट वाले गाने के साथ। फिलहाल एक जो क्वेश्चन, एक जो सवाल, एक जो पजल, एक रिडल मैं आपसे पूछती हूँ हर बार ही। वैसी एक रिडल है, मैं आपको स्टोरी लाइन बताऊँगी एक फिल्म की और आपको जज करना है कौन सी फिल्म है। अच्छा, इसमें जो किरदार है ना उसका नाम भी बताऊँगी ताकि आप जल्दी से जल्दी इसे जज कर सकें और हमें मैसेज कर सकें, और जो सबसे पहले मैसेज करेगा उसका फेवरेट वाला गाना ज़रूर बजेगा। तो ये एक सस्पेंस मूवी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसकी कहानी मर्डर मिस्ट्री के चारों ओर बुनी हुई है। इस लव ट्रायंगल में फिल्म में अभिनेता के पिता की हत्या कर दी जाती है जिसका आरोप खुद उसके पुत्र डैश पर आता है। अब नाम बता दूं क्या पुत्र का? ठीक है, खुद उनके पुत्र साहिल पर आता है। मगर फिल्म के अंत में जब असली दोषी का पता चलता है तो सभी चकित रह जाते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सी मूवी है ये? सस्पेंस मूवी है, मर्डर मिस्ट्री है, और साहिल नाम तो याद ही होगा। नहीं याद है, फटाक से लिख भेजिए 8657661071 पर। बने रहिए यहीं, आप सभी जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके गीत और उनके नाम ज़रूर लूँगी इस गाने के उस पर। अभी फ़िलहाल सुनते हैं अजय साकरे जी की पसंद का ये वाला गाना। अजय जी हमें लिख रहे हैं इंदौर से और आ रहा है उनकी पसंद का गाना।

0: था तुम्हें हिंदुस्तान से?
1: गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर।

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे राजकुमार जी। लिखते हैं कि बहुत बहुत श्रद्धांजलि कारगिल विजय दिवस की पर हम जो सैनिक हैं वो जो हमारे साथ अब नहीं हैं लेकिन उनका जो भी हमारे प्रति जितना भी उन्होंने किया उस सब के लिए हम हमेशा ही उनके आभारी रहेंगे और उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे सैनिकों की बात हो रही है और उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि, आप सभी को विजय दिवस की बधाई। ये लिखते हैं, इसके आगे हमने कहानी जो आपको पढ़ के सुनाई थी और आपको बताना था फिल्म का नाम, तो एक बार फिर कहानी बोल देती हूँ। ये एक सस्पेंस मूवी थी जिसकी कहानी मर्डर मिस्ट्री के चारों ओर बुनी गई थी। इस लव ट्राइंगल फिल्म में अभिनेता के पिता की हत्या कर दी जाती है जिसका आरोप खुद के पुत्र साहिल पर आता है, मगर फिल्म के अंत में जब असली दोषी का पता चलता है तो सभी चकित रह जाते हैं। इस फिल्म का नाम है गुप्त। और सही जवाब तो बहुत सारे हमारे पास आए हैं लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हमें जवाब दिया है वो है टीडी मल्होत्रा जी, साहिल बिट्टा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और उनके साथ ही चंडीगढ़ से, और इनका प्यारा सा गाना एक रेडी है बिल्कुल। अब मैं उन श्रोताओं के नाम ज़रूर लेना चाहूँगी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनमें आते हैं विजेंद्र जी अकोला से, साथ ही फिरोज जी, प्रमोद जी, शुभलक्ष्मी जी, मुकेश जी, सुशीन नारकर जी, और साथ ही स्वाति जी, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लालगिरी गोस्वामी जी, अरुणा जी, राकेश माथुर जी, मुकुंद कुलकर्णी जी पूना से, और साथ में टीडी मल्होत्रा जी तो हैं ही, पंकज मोहित जी, और दीपा पालकर जी है हमारे साथ, मिंटू जी हैं, गोपाल जी हैं, जिला हिसार से हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, अभिजीत जी हमारे साथ हैं, अजय शाकरे जी हैं हमारे साथ, दिग्दर्शन और कविता जी, संदीप जी, फिरोज जी, राजेंद्र जी, भूषेन जी, रजनीकांत पाटिल जी, बाबा जी दादर से, अंजू

जी, धनंजय जी और प्रवीण जी हमारे साथ हैं। अगर आपका नाम इस लिस्ट से कहीं गायब है तो जल्दी से अपना नाम लिख के भेज दीजिए हमें, कहाँ, 8657661071 पर।

एक और स्टोरी लाइन आपको देकर जा रही हूँ बिल्कुल वापस आने के लिए ही। स्टोरी लाइन ये है कि लीक से हटकर बनी इस फिल्म को आपको जज करना है। फिल्म में नशरुद्दीन शाह है, शबाना आजमी जी हैं, अमोल पालकर जी हैं, जैसे माहिर कलाकार हैं सारे, और ये सभी जो है बॉलीवुड फिल्म के सेट पर एक रहस्यमय ढंग से हत्याएँ शुरू हो जाती तो कोई समझ नहीं पाता कि ये कौन कर रहा है। फिल्म के अंत तक ये रहस्य बना रहता है। आपको जज करना है कौन सी फिल्म है ये, और हमें लिख भेजना है 8657661071 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। समाचारों के उस पार फिर होंगे गीत आपके पसंद के। बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ और हम कर रहे हैं बात कुछ फिल्मों की कहानियों पर। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, TD मल्होत्रा, साहिल बंटी, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और उनके साथियों की पसंद पर चंडीगढ़ से हमें लिख भेजा है उन्होंने, और ये गाना आ रहा है इस वक्त आपके FM रेनबो पर।

बिल्कुल, और आप भी उदास मत होइए, अगर आपका वाला गाना नहीं बजा है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे सारे श्रोताओं की फरमाइशें हम पूरी कर सकें, पर समय की बाध्यता की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम फरमाइशें पढ़ तो लेते हैं और खूबसूरत गाने उन्होंने पसंद किए होते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम नहीं ले पाते उनके गाने, तो उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमने पूछा था सवाल कि कौन सी फिल्म है जो लीक से हटकर बनी है। इस फिल्म में नशुद्दीन शाह, सबाना आजमी और अमोल पालेकर जैसे माहिर कलाकार हैं। एक बॉलीवुड फिल्म के सेट पर जब रहस्यमय ढंग से हत्याएं शुरू हो जाती है तो कोई समझ नहीं पाता ये कौन कर रहा है, और फिल्म का अंत जो है वो रहस्यमय ही बना रहता है। ये फिल्म है खामोश। जी हाँ, बड़ी अलग सी फिल्म है, ज़रूर देखिए अगर नहीं देखिए तो। और हमारे जो श्रोताओं ने हमें जवाब दिए उसके मुताबिक तो ऑलमोस्ट सब ने देखी हुई है। सो बहुत सारे सही जवाब, लेकिन सबसे पहले आने वाला सही जवाब मिला है हमें श्यामला गौरी जी, ये हमें सबसे पहले लिखती हैं, और सही जवाब खामोश फिल्म है। साथ ही इनकी पसंद का गाना भी तैयार है। और भी जितने हमारे लिसनर्स यहाँ जुड़ गए हैं उन सभी को मेरा नमस्ते। और बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि आज कारगिल विजय दिवस पर हमारे शहीदों को शत-शत नमन है और आप सभी को विजय दिवस की बधाइयाँ। आप सभी को भी आकाशवाणी की तरफ से यानी हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, गाना पसंद करने वाली हैं श्यामला गौरी जी। What?

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका, बलवीर सिंह और साथी, ये सभी हमें इस गीत की फरमाइश करते हैं। और आप सभी से विदा लेने का वक्त हो गया है। कार्यक्रम का आखिरी गीत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे यानी नमिता को इसी गीत के साथ दीजिए इजाज़त।

0: and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about Science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है. केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता. यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते. इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है. वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए. मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है. यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है.
0: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being vocal for local.
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
1: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
0: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said, Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who had laid down their lives in the defense of the motherland. In a social media post, President Murmu said the unparalleled valor, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces. In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at the cenotaph and paid tributes to the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation Vijay. Addressing the gathering, Mr. Rajnath Singh said, the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment when the world witnessed the indomitable courage and valor of Indian soldiers. More from our correspondent.
2: Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemoration at the Kargil War Memorial in Dras by paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. Addressing the gathering, he said that the Kargil War was not only India's military and diplomatic victory, but also a defining moment that showcased the courage and valor of Indian soldiers before the world. He said their bravery continues to be a matter of pride for every Indian. The Raksha Mantri also honored Vietnam and the next of kin of Kargil martyrs and flag it in the Shaurya Vijay Yatra. For Akashwani News, this is Anad Ali from Kargil War Memorial, Dras.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश

0: की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक

0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
2: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: पांच बजकर तीन मिनट का वक्त और आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ, और आपने ट्यून किया है 107.1 FM रेनबो। 26 जुलाई एक ऐसा दिन जब देश गौरव से गर्व से भर जाता है,

जिसने हमें गौरव से गर्व से भर जाने वाले लम्हे दिए, जिसने हमें कारगिल विजय दिवस दिया। ये महज एक चोटी की, पर्वत की, शिखर की या एक मिशन की विजय नहीं थी, बल्कि ये भारतीय सेना और उसके उस हौसले और इरादों की विजय थी जो उसने आज के रोज कर दिखाया। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। जी हाँ, तारीख थी 3 मई 1999। इसी रोज शुरू हुआ एक सफर, एक मिशन जो पूरे 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन तक चला। जानेंगे इस विजय की विजय गाथा की पूरी कहानी। बने रहिए सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो के साथ और अपने दिल की आवाज आते थे के साथ।

5:11 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ 107.1 FM रेनबो मुंबई पर। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस को, एक ऐसा मिशन जहां हर चीज़ दुश्मन के फेवर में थी सिवाय जीत के। हमारे सामने थी ऊंची चोटियां, खड़ी चट्टाने और उस तक पहुंचने का एक मुश्किल रास्ता। हमको मिटा सके ये जमाना, जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हमने हर उस मुश्किल को पार किया और अपना रास्ता खुद से बनाया और उसे नामुमकिन सी लगने वाली एक मंजिल को तय किया।

5:22 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ, और बात हो रही है करगिल की। तो करगिल शहर श्रीनगर से 205 किलोमीटर और 127 मील दूर स्थित है। करगिल एक महाद्वीपीय जलवायु है जहाँ मौसम सर्द रहता है और सर्दियाँ लंबी और ठंडी होती हैं, और इसकी खास बात यह है कि तापमान अक्सर यहाँ पर -48 से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला एक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 करगिल से होकर गुजरता है। राजमार्ग के ऊपर पहाड़ियों पर स्थित सैन्य चौकियां थी, आमतौर पर लगभग 5000 मीटर ऊंची थी, जिनमें से कुछ 5485 मीटर तक ऊंची थी और उबड़ खाबड़ थी। इलाका सकड़ी और पतली सड़कों से होकर गुजरता था, यातायात यहाँ पर धीमा हो जाता था और

अधिक ऊंचाई थी जो विमानों की भार वहन क्षमता को प्रभावित करती थी। भारत ने NH-1 को कवर करने के लिए, यानी कि वो हाईवे था जहां पर जहां से अगर दुश्मन कब्जा कर ले तो वो हमला कर सकता था और NH-1 को ब्लॉक कर सकता था, इसलिए भारत ने उस पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी और उसे सुरक्षित रखते हुए फौलाद से हौसले लेते हुए लिए हुए आगे बढ़ता रहा। साहिल लुधियानवी फरमाते भी हैं कि हजार बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल तो खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर

जब थल सेना ने अपने कदम बढ़ा दिए, फिर वायु सेना ने ऑपरेशन सागर लॉन्च किया और उसी के जरिए अभियान में शामिल हुई। जबकि नौसेना ने समुद्र में अपनी रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी थी और दुश्मन पर दबाव भी बढ़ाना शुरू कर दिया था। तीनों सेनाओं के शानदार तालमेल से युद्ध की दिशा बदलने लगी और बदलती दिशा के साथ एक नई नींव रखी गई, टोलोलिंग, पहली बड़ी जीत जिसने हमारा हौसला बढ़ाया। कारगिल युद्ध का पहला निर्णायक मोड़ टोलोलिंग लड़ाई का वो मोड़ साबित हुआ जहां से दुश्मन बेहद डरा हुआ और उसके हौसले पस्त नजर होते हुए दिख रहे थे और भारतीय सैनिकों को खड़ी चढ़ाई, ऊंची चढ़ाई और बर्फ और लगातार हो रही गोलीबारी के बीच आगे बढ़ना था। कई दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद 13 जून 1999 को सेना ने टोलोलिंग और पॉइंट 54590 पर दोबारा से कब्जा कर लिया और जितने आगे के ऑपरेशंस रहे उनका रास्ता आसान कर दिया। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है।

लव यू जिंदगी में लुत्फंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ और अपने ट्यून की आवाज 107.1 एफएम रेनबो मुंबई। बात हो रही है विजय की, विजय दिवस की, यानी कारगिल विजय दिवस की। टाइगर हिल फतह ने बदली युद्ध की कहानी। कारगिल युद्ध का सबसे यादगार और ऐतिहासिक अध्याय था टाइगर हिल की लड़ाई। द्रास सेक्टर की यह चोटी रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी। यहां से दुश्मन राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर रख सकता था, जिससे सेना की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। कई दिनों तक भीषण लड़ाई के बाद 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर फिर से कब्जा हुआ। और यह जीत केवल एक चोटी वापस लेने की जीत नहीं थी, बल्कि उसी पल से युद्ध का पलड़ा निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में झुक गया। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।

टाइगर हिल, टोलोलिंग पॉइंट 4590, बटालिक, मुश्कोह वैली, इन सब को वापस छुड़ाने के बाद करीब 3 महीने तक चले ऑपरेशन के अंत तक भारतीय सेना ने सभी कब्जाई चौकियों को मुक्त करा लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत ने एलओसी को पार किए बिना यह जीत हासिल की। और फिर 14 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। और आज जब हम करगिल विजय दिवस मना रहे हैं तो उन सभी देश के अमर वीरों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत तिरंगा आज भी उसी शान से लहरा रहा है। अपना जमाना आप बताते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बताते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया।

इसे जोरदार और जोशीले गाने के साथ हम आपको सुनवाते हैं एक और बेहतरीन सा गाना इसी मूड का। और फिलहाल के लिए लव यू जिंदगी से विदा। बहुत जल्द ही आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़े बयां में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ये मोहब्बत हमारा साथ यूं ही बनाए रखें। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो।

आदाब ख्वातीनो हज़रात, अ वेरी गुड इवनिंग। अंदाजे बयां में आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। मोहब्बत एक ऐसा एहसास, जब इंसान इसमें डूबता है तो फिर डूबता ही चला जाता है। फिर सामने वाला शख्स महज वो शख्स ना नजर आकर खुदा के मानिंदे नजर आता है। फिर उसके जहन में घूमते जो ख्यालात अल्फाज में जब ढलते हैं तो कुछ इस अंदाज में ढलते हैं और कुछ यूं हर्फ निकलते हैं कि अब क्या गजल सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद।

जो हर पल गुजर रहा है, जो कभी ठहर कर नहीं रहता, रुकता भी नहीं, किसी का इंतजार भी नहीं करता, चुपचाप आता है और गुजर जाता है, यानी बात है वक्त की, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है, पर यह इंसान पर है कि उसे कैसे देखता है। अगर यह इंसान पर थोड़ा मुश्किल बीतता है तो उसे वो इंसान वैसी ही संज्ञा दे देता है, वो उसे दुख का नाम दे देता है। तो किसी के लिए ये एक खुशनुमा लम्हात अपने अंदर समेटे एक सौगात है, तो वो उसे खुशी

का नाम दे देता है। दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताजा हवा चली है, अभी वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी। कुछ बुरे लम्हात गुजरे तो गुजर गए, अब तो बहुत कुछ हसीन होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। किसी की जद में आकर बहुत कुछ खूबसूरत होने वाला है, और जब किसी की जद में आकर बहुत कुछ खूबसूरती में तब्दील होता है, तब लगता है कि जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से भी बेहतर नजर आती है हमें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मोहब्बत में डूबा इंसान, उसे बस एक ही शख्स हर वक्त दिखता है, नजर आता है, और सारी कामनाएं, सारी ख्वाहिशें उसकी उसी के लिए बलती हैं। वो बस एक नजर दीदार के लिए तरसता रहता है, तड़पता रहता है, और जहन में ख्यालात भी उसी के रहते हैं। तब बशीर बद्र साहब फरमाते हैं कि सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं, सोचा तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा तुझे, सोचा तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा तुझे, मेरी वफा मेरी खता, तेरी वफा कुछ भी नहीं।

6:37 का वक्त, आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। मोहब्बत, मोहब्बत में जब इंसान होता है ना, तो वो इंसान कहीं ना कहीं वो केवल अपना नहीं रह जाता, या उसके अंदर केवल खुद का तत्व नहीं रह जाता, उसके अंदर कोई और भी समाने लगता है, किसी और के ख्यालात भी उसके अपने होने लगते हैं। और कभी कभी लगता है कि वो शख्स नहीं बोल रहा है, उसके अंदर से वो सामने वाला शख्स बोल रहा है जिसके मोहब्बत में वो मुब्तला है। होता है ना ऐसा? अशरफ जहांगीर साहब फरमाते हैं कि न पूछो हाल मेरा तुम कहीं बेहतर न कह दूं मैं, न पूछो हाल मेरा तुम कहीं बेहतर न कह दूं मैं, अगर सच लाजमी है तो तुम्हें पत्थर न कह दूं मैं। कई लेक्चर इसी डर से मैं अक्सर छोड़ देता हूं, कई लेक्चर इसी डर से मैं अक्सर छोड़ देता हूं, तुम्हारे रोल नंबर पर कहीं यस सर न कह दूं मैं।

दिल की बात तो अल्फाज में कैसे बयां हो। तो मोहब्बत में डूबा आशिक सोचता है कि उसे क्यों ना कागज कलम के माध्यम से कागज पर उतारा जाए, लफ्जों में ढाला जाए, मोहब्बत की स्याही से कुछ मोहब्बत से लबरेज अफसाने लिखे जाएं। लेकिन ये काम तो जब मोहब्बत में डूबा इंसान और ख़ास तौर से पहली मोहब्बत में मुब्तला इंसान करने की कोशिश करता है तो बारह ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो शायद उसे पता ही नहीं लगती कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म। क्योंकि मोहब्बत का खत लिखना है, प्यार का खत लिखना है, वक्त तो लगता ही है। ये कोई छोटी बात तो है नहीं, एक लंबी दूरी को एक खत में समेटना है, एक लंबी दूरी को तय करना है और प्यार का पहला खत लिखना है, तो वक्त तो लगता ही है ना।

मोहब्बत में डूबे लोग जब एक दूसरे के हो जाते हैं तो उनके अंदर बहुत कुछ एक दूसरे का हो जाता है। फिर उनके ख्यालात एक जैसे हो जाते हैं, उनकी नजर एक जैसी हो जाती है, उनकी महक भी एक जैसी हो जाती है। बशीर बद्र साहब फरमाते हैं कि वक्त रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए। मैंने दिन रात खुदा से ये दुआ मांगी थी, कोई आहट ना हो दर पे मेरे जब तू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई भी खुशबू में लगाऊं तेरी खुशबू आए। और यूं ही खुशबू आने पर आशिक मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जो दिल में है वो कुछ और होता है, आंखों पर कुछ और नजर आता है। गजल को सुनते हैं और अंदाजे में यहां से फिलहाल के लिए बिता लेते हैं। बहुत जल्दी आपके अपने प्रोग्राम में मिलेंगे, कहीं मैं चाहिए सुनते रहे 107.1 FM रेनबो मुंबई। अपनी पसंदीदा फरमाइशों के गीत हमें भेज दीजिए 8657661071 व्हाट्सएप नंबर पर। फोन करके भी हमें इतला दे सकते हैं 4515 4132 और 33 पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: सात बजकर 11 मिनट का वक्त और ये वक्त होता है हमारा और आपका, यानी कि आपके मैसेजेस, आपकी बातें और हमारी आवाज, और उसके साथ साथ आप लुत्फंदोज होते हैं खूबसूरत से नगमों के साथ, खूबसूरत से गानों के साथ। और हमारे पास बहुत सारे मोहब्बतों से भरे हुए कुछ मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। विजेंद्र खटोल साहब का अकोला से मैसेज आ गया है। प्लीज प्लीज प्लीज, लास्ट लाइन में लिखा है, अच्छा आप कॉल कर रहे थे जी, फिर से करिएगा, मैं उठा लूंगा। ओके। और हीरामणि साहब का मैसेज आ गया है हमारे पास, और महाराज कीर्तनपुरी जी का मैसेज आ गया, प्रकाश शिंदे जी का मैसेज आ गया है, दिग्दर्शन और कविता जी का मैसेज आ गया, दीपाली शिरोदकर जी का मैसेज आ गया है, दीपा पालकर जी, वैदेही जी, वेद मिड्डा जी, अलका मिड्डा जी, संजय दर्शन जी, अरविंद कुलकर्णी जी, प्रणव शिंदे जी, राजेंद्र परमार जी, अजय साकरे जी, पंकज मोहत जी, राकेश माथुर जी, संजय पाटिल जी, रजनीकांत साहब और दत्ता केदार पंडरपुर जी का मैसेज भी हमारे पास आ गया। और भी कई नाम हैं लेकिन सिलसिलेवार ढंग से उन पर चलेंगे, लेकिन अभी हम किसी एक मैसेज पर चलते हैं और सुनवाते हैं आपको उनकी पसंद का गाना। तो दीपाली शिरोडकर जी का मैसेज हमारे पास आया है और आप छोटी सी तारीफ भी कर रही हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बड़ा सा शुक्रिया अदा कहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश आपने हम तक भेजी और वो गाना हमने क्यों करके रख लिया है और वो आप तक पहुँचने के लिए बेताब है। तो सुनिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई। हम हैं आपके साथ, आपके दिल की आवाज़ आदित्य आपके साथ।

जी 7:16 का वक्त और वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता हुआ और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले मैसेज की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है किन की आई है हाँ जी, दीपा पालकर जी। इनके बहुत सारे गाने हमने देखे और उनमें से कुछ गाने बहुत ही खूबसूरत हैं और एक गाना बहुत ही खूबसूरत हमने जिसको क्यों बिगड़ के रख लिया है और वो आप तक पहुंचने के लिए बेताब है। आप इस गाने का लुत्फ लीजिए और जो दूसरे लोग हमें सुन रहे हैं वो अपनी फरमाइशें हमें भेजना मत भूलें, व्हाट्सएप के जरिए और फ़ोन कॉल के जरिए भेज सकते हैं। तो आप हमें नंबर नोट कर लें और भेजना शुरू कर दें, 8657661071। आई रिपीट, 8657661071। और फिलहाल दीपा पालकर जी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गाना।

0: But he's your best friend, yeah.
1: इस खूबसूरत से गाने की फरमाइश हमारे पास भेजी है अनुराधा जी ने, और आप हमारे हालचाल पूछती हैं, हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, और आपका मैसेज देखकर और भी ज़्यादा शानदार महसूस कर रहे हैं, और आपने जिस तरीके से तारीफ की है बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए, और आपका गाना आप सुन रही हैं।

अगला मैसेज हमारे पास आया है विजेंद्र जी का, और बहुत सारे मैसेजेस आपने ऐसा हमें भेज दिए हैं, और आपने पता नहीं क्या क्या लिखा है कि अच्छा ओके शायद आपने कॉल भी कर रहे हैं, आपने वो भी लिखा है जी, लेकिन हमारे पास लगातार मैसेजेस इतने आ रहे हैं कि कॉल की तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए माजरत चाहेंगे, लेकिन हमने आपका गाना ज़रूर क्यों कर लिया है जो आपको सुनाई पड़ना शुरू हो।

चुका होगा। तो इसी के साथ फिलहाल हम आपको कुछ जरूरी बातें भी बता देते हैं, जब तक गाने की म्यूजिक से आप लुत्फंदोज हो रहे हैं। अभी आप एक खास कार्यक्रम सुनेंगे दिल्ली से, और उसके बाद आप एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनेंगे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से, तो उसे भी, ये दोनों अहम कार्यक्रम, इन्हें भी सुनना मत भूलें। और फिलहाल इस गाने का लुत्फ लीजिए।

0: एयर क्वालिटी हो या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज जस्टिस। अब एनवायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ, कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पे प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पे जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गाँव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा, उतना नहीं है। वी गेट इट इन सुपरमार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमिडीज की जरूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इशूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमिडीज मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज को कैसे कम्युनिटी क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते। हर प्रॉब्लम के लिए उनके उनको उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन जिन के लिए किस किस इशूज पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके चलते मैं तीन चीज़ों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, उसके साथ हम एक सीआरजेड नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे सीआरजेड एक केस कैसे एनजीटी का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये कम्युनिटी कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इश्यूज पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ भी है। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआई नोटिफिकेशन के बारे में। ईआई नोटिफिकेशन पे जो है, इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है, दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो वी देर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज लाइक यू नो इट्स बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर बेटर देन क्योर। सो दैट्स द आइडिया दैट वी शुड टेक सम प्रिकॉशन बिफोर वी आर कमिंग अप विद सम एक्टिविटी विच इज इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर कमिंग अप विद अ इंडस्ट्री which is taking such and such ground water, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment, that need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: Now, as a group of organized, a community, how they can participate in that area? So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is in the our law gives that and give the provision that this consultation when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो local news media हो उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो national media हो सारे उसका जो local language है उस पर वो project के बारे में बात करके ये एक announcement होना है एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है उनके प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीका से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और इसके क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया। उसके बाद ये चीज़ जो ये जो प्रोविजन है ये हमें बहुत एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करते हैं उनके उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए उनका जो इश्यूज है उन पर बात करने के लिए उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहा है तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है उनको उतना रेमेडीज नहीं मिले तो उनको कोर्ट के पास जाना है तो हम लोग उनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकड़स ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लीगल एक लिटिगेशन बनाए उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट जिस पे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। एनवायरमेंटल इज वी रेड इन Class 8 बुक दैट एनवायरमेंटल इज एवरीथिंग अराउंड अस इट इम्पैक्ट्स मोस्ट द पब्लिक एवरीवन एंड व्हाट इज नीडेड इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल जस्टिस वी शुड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ग्राउंड वेयर द पब्लिक इज एक्चुअली स्टेइंग सर्टेनली रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड इन द टॉप डाउन टॉप टायर but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial so that the every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi so that's how we can achieve through environmental justice when it's top down rather than it's a bottoms up approach it should be there.
1: You have been listening to a talk on environmental justice, public participation and legal remedies conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Justice, Public Participation and Legal Remedies.
2: So, initiatives government ने क्या लिए? 2018 में परिवेश पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है NIC के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल विंडो, सिंगल विंडो दिया गया है फॉर एड्रेसिंग द एप्लीकेशंस, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है। इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006

आई है नोटिफिकेशन में, कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल एनकैप जो एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए एनकैप का प्रोविज़न बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दिए। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं, स्टेट लेवल पे सीआ करती है एंड सीपीसीबी भी एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पेंसेशन लगाना या फिर रिस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपरली सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुमोटो कॉग्निजेंस लेने का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से, कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 60। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं, जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सीआ को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक विध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के

0: सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
0: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास

0: विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
1: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bags silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the
4: official intelligence, Dr. Pawan Duggal ji, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज आकाशवाणी के पॉडकास्ट प्रोग्राम पर आकर।
4: देखिए शुरुआत जो है लाइटर नोट पर ही हम करेंगे। अभी कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और शो शुरू होने से पहले ना हम खाने पीने की बात कर रहे थे, लेकिन आजकल आपको व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कहीं ना कहीं इन्विटेशन होते हैं, इन्विटेशन कार्ड की तरह आते हैं और आप उसके थ्रू भी डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि ये 4 डिजिट का जो OTP है वो किस तरीके से आपके अकाउंट नंबर्स को फेरबदल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे आपसे, कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट?
5: देखिए आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं और वो कोशिश करते हैं कि रोज नए पैंतरे, नए तरीके, नए मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करें ताकि लोगों को टारगेट कर सके, शिकार बना सके। और अब उनके लिए तो और खुशखबरी हो गई है क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये लोग नए नए प्रकार के प्रकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और लोग चाहे कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर डरे होते हैं। इनफैक्ट COVID-19 ने सदैव के लिए हमारे जीवन में 2 चीजों का छाप छोड़ दिया, एक है डर और दूसरा है पैनिक। कोविड के बाद हम जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिकी हो जाते हैं, और इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। पहले डराते हैं, हमारा विश्वास लेते हैं और फिर हमें विवश करते हैं कि हम पैसे दें। तो डिजिटल अरेस्ट उसी का एक नया स्वरूप है, साइबर क्राइम का एक नया अवतार है। देखिए साइबर क्राइम का एक अगर आप यात्रा देखें तो हर बदलते दौर के साथ साइबर क्राइम ने अपनी शक्ल को, अपनी मैनिफेस्टेशन को बदला है। आज का जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है वो साइबर अरेस्ट है या डिजिटल अरेस्ट है। उसका कारण बहुत क्लियर है, आज लोगों को अगर आप विश्वास में ले लेते हैं तो भारत में एक प्रॉब्लम है, हम लोग विश्वासी हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं बिना सोचे समझे कि भाई आज तो हैलुसिनेशन का जमाना है, आज चारों ओर डीप फेक है, गलत इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स रूमर्स हैं, और अगर हम अपनी ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो संभावित तौर पर हम फंसेंगे। साइबर क्रिमिनल्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमें डिजिटल अरेस्ट करते हैं। देखिए मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज को है ही नहीं।
4: अच्छा,
5: कानून कहता है कि साहब अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, तो आपके घर आएगी, आपके दफ्तर आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, सर्च वारंट देगी, अरेस्ट वारंट देगी, अरेस्ट करेगी। लेकिन हुआ क्या कि 2023 में भारत ने अपने 3 क्रिमिनल लॉज को बदला जिनमें भारतीय न्याय संहिता आ गई और BNSS आ गए, तो उसके तहत साइबर क्रिमिनल्स ने एक नया नैरेटिव प्रारंभ किया 2024 में कि साहब इंडिया ने तो अब नए साइबर क्राइम्स और साइबर रिलेटेड लॉज बनाए हैं, तो अब ये लॉ कहते हैं कि साहब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, और लोग इस पर विश्वास करने लग गए, और यही रीजन है कि लोग कहीं ना कहीं साइबर अरेस्ट की या डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते जाएं। अभी 3 महीने पहले मेरे पास केस आया है, दिल्ली के एक बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में एक 76 साल की महिला रहती हैं और अकेली रहती हैं, 5 उनके नौकर हैं, दोनों बच्चे बाहर हैं, और उन्हें फोन आता है कि साहब आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। वो कहती है भाई मैंने तो इतना सब सुन लिया है और दिल्ली पुलिस कितने संदेश सुन लिए हैं, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, मैं आपको नहीं मानती। वो कहते हैं अच्छी बात, फिर कहते हैं कि साहब आप इस फार्म हाउस में रहते हैं? वो कहती हाँ। कहते हैं हमने आपके चारों फार्म हाउस के ओर अपने शार्प शूटर्स लगा रखे हैं, अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी तो हम आपको भून डालेंगे। जब उन्हें
4: लोकेशन बताते हैं,
5: लोकेशन बताते हैं ये आपका फार्म हाउस है, और बताते हैं कि साहब हमने फार्म हाउस के आसपास अपने शार्प शूटर्स रखे हुए हैं, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो हमारे

0: आप शूटर्स आपको भून देंगे। जब उन्हें लगता है कि मेरी जान ही जाने वाली है, तब वो कहते हैं भैया जो पैसे लेना लो। पहले शुरुआत में 15,000 UPI की तरफ पेमेंट होती है, फिर वो कहते हैं बैंक से पेमेंट करो, फिर उन्हें पता है कि आपके इतनी FD है। तो करीबन 3 दिन में वो 3,74,00,000 रुपए दे चुकी होती हैं। जब उन्हें लगता है कि मेरे पास अब पैसे रहे नहीं, तब वो कहती हैं हमने मुझे मारना मार दो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुलिस के पास चली, तब वो आके रिपोर्ट करती हैं। तो आज जब इतने बड़े लेवल पर इतने एजुकेटेड लोग भी आज डिजिटल रेस का शिकार हो जाते हैं, तो हम सबको सावधान होना पड़ेगा क्योंकि हम कल शिकार हो सकते हैं।
1: देखिए आपने डर की बात कही थी
0: जी,
1: लेकिन डर आना स्वाभाविक भी है, बिकॉज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, वो आवाज़ बदल के भी आपके सगे संबंधी की आवाज़ में आपसे बात कर सकते हैं, और वो पैनिक होना किसी का भी स्वाभाविक है, बिकॉज आपका घर में आपका कोई बेटा हो, कोई पिता हो, और जब उसकी आवाज़ में कॉल आएगी तो लोग कैसे नहीं डरेंगे।
0: यही तो प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि हमारे परिवारजन सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अगली बार कोई कॉल आए, हम सबको अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है, और वो ब्रह्मास्त्र है राइट टू डिस्कनेक्ट। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रलोभन हो, कोई भी डर हो, कोई भी शक शुबा हो, मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं पहले अपने परिवारजन को कॉल करूंगा या करूंगी कि भाई तुम ठीक तो हो, मुझे मैसेज आया है। अगर उनसे बात हो गई और वो खतरे में है, तब मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन अधिकांश लोग जो अपने ब्रह्मास्त्र की जो पावर है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो क्योंकि डिस्कनेक्ट नहीं करते तो उस भंवर में फंसते चले जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, एक बार आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, एक आपका डर चला गया, दूसरा अब आपको ये चिंता नहीं रही कि साहब ये मुझे तंग करेंगे या मुझे टारगेट करेंगे, तीसरा मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने परिवारजनों को कॉल करूंगी, मैं संतुष्ट हूँ, सब बढ़िया ठीक ठाक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, और उस नंबर को ब्लॉक करूंगी। और साथ ही साथ अब अगली बार ये भी एक प्रण लूंगी कि भाई अब ऐसा कोई कॉल होगा तो मैंने पहले 2 सेकंड के बाद कॉल को रखना ही नहीं है। कॉल को डिस्कनेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई लोग बुरे मानते हैं, मानने दें। मेरा बुनियादी जो मेरी जिम्मेवारी है वो मेरे प्रति है, मेरे परिवार के प्रति है, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को, अपने परिवारजन को प्रोटेक्ट करना है।
1: देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि फॉर एग्जांपल सर हम बात कर रहे हैं अभी बैठकर, कोई किसी भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी खरीदना है, फोन लेना हो, टी शर्ट लेनी हो, अगर आपका फोन दूर भी रखा हुआ है थोड़ी देर के बाद आपको वो सारी चीजें दिखाने लगेगा, मतलब आपका डेटा इस तरीके से भी सेफ नहीं है। और बहुत बड़े बड़े को फाउंडर्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो जब बैठते हैं काम करने के लिए, चाहे वीडियो कैमरा ऑन हो ना हो, वो टेपिंग करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, पहले के जमाने में आप ताला लगाकर रखते थे अपने घरों में, लेकिन आज चाबी सामने वाले को खुद आप दे रहे हैं, अलाउ अलाउ एंड अलाउ।
0: समस्या ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा फोन हमारा जीवन संगनी है, कि इसके बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। कभी उम्मीद करिए 15-20-30 साल पहले जब ये फोन नहीं हुआ करते थे, क्या जीवन नहीं चला करता था? जीवन जब भी अच्छा चला करता था और संतुष्ट रूप से चला करता था। प्रॉब्लम क्या है ना, हमें लगता है कि फोन सिक्योर है, फोन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। मुझे लगता है कि फोन से ज्यादा अनसिक्योर डिवाइस आज की तारीख में नहीं है। दूसरा, हम फोन को साधु संत क्यों मानते हैं? ये फोन जो है केवल फोन नहीं है, खासतौर पर स्मार्टफोन, ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ये कॉन्स्टेंटली आपकी बातों को सुनता है, आपकी इजाजत के बगैर ये आपकी बातें आपके डेटा को बाहर भेजता है, उस डेटा का विश्लेषण कर कंपनियां या एडवर्टाइजर्स आपको टारगेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे कल सुबह बॉम्बे जाना है, बस ये बात करूंगा, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, साहब बॉम्बे की चीप टिकट यहाँ है, बॉम्बे के अच्छे होटल यहाँ पर हैं। ये तब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली सुन रहा है। तो अगर आप अपनी निजता का संरक्षण करना चाहते हैं तो मेरा सबने निवेदन है कि 2 फोन रखने का प्रयास करें, एक नॉर्मल फोन और एक फीचर फोन, जो बिल्कुल 1500-2000 वाला फोन होता है, वो सिर्फ फोन का काम करता है, वो लिसनिंग डिवाइस नहीं होती, वो फोन जो है आपकी प्राइवेसी को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है।
1: देखिए डिजिटल हो चुके हैं हम, और ये होता है कि आप लॉ लेकर आए इंडिया में या फिर जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर 15 हैं तो आप अलाउ नहीं है सोशल मीडिया पर आने के लिए, लेकिन इंडिया में ये डेटा आपको बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा कि यंगस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर वो दिखाना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है जानबूझकर और लोगों को। तो इसके लिए कोई लॉ है
0: आज की तारीख में? भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित करके इम्प्लीमेंट किया।

0: कि साहब बच्चों को सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं मिलेगा, खासतौर पर जब वो 15 साल के ना हो। हमारे यहाँ कानून कहता है कि साहब जब तक आप 18 के नहीं हुए तब आपको बच्चा माना जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कानून भारतवर्ष में नहीं है जो बच्चों को बार करता है, बैन करता है कि वो सोशल मीडिया पर एक्सेस ना करें। इनफैक्ट ये बैन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज तो हमने बच्चों को बहुत छोटी उम्रों में डिवाइसेस देने शुरू हो गई। कुछ साल पहले हमारे एक परिचित के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई और वो बच्ची जब 2 महीने की थी तो उसके माँ बाप ने उसको एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया? एक आईपैड मिनी कनेक्टेड टू द इंटरनेट।
1: ओके।
0: अब जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में पहला शब्द नहीं बोला उसने आपने उसको आईपैड दे दिया। जब वो बच्ची 6 महीने की हुई वो आईपैड को प्ले करने के लिए के संदर्भ में अपने पेरेंट्स से ज्यादा आगे निकल चुकी थी। और जब इस तरह की हम चीजें कर रहे हैं वो दूसरी बात है कि बच्ची का नेगेटिव इतना इंपैक्ट हुआ उसकी माइंड पर कि उसने पहला शब्द जो उसे 6-7-8 महीने में बोलना था वो उसने 19वें महीने में बोला।
1: स्पीच डिले
0: हो गई। बट द फैक्ट इज कि हम तो आज बिजी है ना, हम कहते हैं भाई बच्चों को चुप कराने के लिए फोन दे दो, फोन देखता रहेगा, गेम्स खेलेगा, ठीक है। मुझे लगता है इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कोई काम हम कर ही नहीं सकते। अगर आपने अपने भविष्य में अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है तो उसे अनावश्यक तरीके से इंटरनेट के एक्सपोजर से बचाना है। ठीक है, इंटरनेट जरूरी है लेकिन बच्चों को बताना भी तो जरूरी है कि सोशल मीडिया केवल एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्सी पिक्चर नहीं है। सोशल मीडिया पर हर प्रकार के पीडोफील्स मौजूद हैं, साइबर क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, उनको आजीवन के लिए उनको आघात करा सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को एम्पावर करना जरूरी है लेकिन कानून के माध्यम से नहीं, क्योंकि कानून का तो उल्लंघन रोज होगा। बेटर यह है कि माँ बाप की जिम्मेवारी है बच्चों को दोस्त होने के तौर पे बताएं कि साहब ये खतरे हैं, आप बच के रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फंस गए तो हो सकता है आपका आने वाला जीवन एक सदैव प्रेजुडिशियल इंपैक्ट हो जाएगा।
1: देखिए कहा जाता है कि देखिए गलतियों की माफी हो सकती है, गलत फहमियों की नहीं। अगर आप गलत फहमी का शिकार हो गए, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फील्ड में धुरंधर हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलतियां उनसे हो जाती है, डिजिटल अरेस्ट वो हो जाते हैं, उनके अकाउंट से पैसा चला जाता है, अब उनका पहला रिएक्शन क्या रहना चाहिए? चलो रिएक्शन तो हमें पता है क्या होना चाहिए, लेकिन पहला मूव क्या होना चाहिए?
0: पहला मूव आपका होना चाहिए कि साहब हो गई गलती, हो गई, जहां से जागूं वहीं से सवेरा समझूं। तो इसलिए तुरंत शोर मचाना है, चुप नहीं बैठना है। कहां शोर मचाना है? आपने इसको इन्फॉर्म करना है पुलिस को। आपके पास तुरंत सरकार ने 2 विशिष्ट विकल्प दे रखे हैं। आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, 1930 जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और तुरंत कॉल कर लीजिए, क्योंकि तुरंत कॉल करने पर अगर आपका कॉल लग गया और वो तुरंत आपके बैंक के अकाउंट में देखेंगे, अगर पैसा है जहां पर भी बैंकिंग चैनल में, उसे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज कर देंगे तो हो सकता है 1-1.5 महीने में पैसा वापस आ जाएगा। तो तुरंत आपने कॉल करना है। सेकंड, आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पर जाकर, यहां पर जाकर रिपोर्ट करिए और बताइए गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट बता लीजिए जितनी जल्दी। पहले हम कहा करते थे कि साहब गोल्डन आवर 1 घंटे का होता है, आज के तारीख में हम कहते हैं कि साहब आपका गोल्डन आवर पहले 7 मिनट है। अच्छा? अगर आपने पहले 7 मिनट में इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने आपका पैसा ब्लॉक कर दिया तब आपका पैसा बच जाएगा।
1: ये अगर आप मिनट आपसे कोई छीन नहीं सकता,
0: कोई नहीं छीन सकता, और अगर आपने 7 मिनट वेस्ट कर दिए तो पैसा सदैव चले जाने वाला है, और एक बार पैसा बैंक अकाउंट से चला गया तो वापस लगभग कभी भी आने वाला नहीं है।
1: बिल्कुल, पैसा तो ऐसी चीज है जो चला गया तो चला गया। अब देखिए 90% क्या कहूंगा कि 99% केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारी मूवीज भी इस पे बनी है, जामतारा कह लीजिए या अदर वेब सीरीज, के जो आपके साथ फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है ना, अगर दिल्ली में आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो किसी और स्टेट में बैठा हुआ है, कहीं गांव देहात में बैठकर पूरी प्लानिंग के तहत आपके साथ ये सारी चीजें जो है इसे अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में कैसे पकड़ा जाएगा, किस तरीके से रिकवर किया जाएगा?
0: देखिए चुनौती ये है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बंदा कहीं पर भी बैठा हुआ किसी और कंप्यूटर सिस्टम में, किसी और शहर में, किसी और राष्ट्र में जाकर टारगेट कर सकता है और पैसे से आपको वंचित करा सकता है। तो अभी प्रॉब्लम यह है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कोई इंटरनेशनल साइबर लॉ नहीं है, ना ही कोई साइबर लॉ ट्रीटी मौजूद है, लेकिन आप क्योंकि जिस राष्ट्र में रहते हैं राष्ट्र के कानून आप पर लागू हैं। भारत का अपना विशिष्ट साइबर लॉ है जिसे हम बोलते हैं भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000। इस कानून का संशोधन हमने 2008 में भी

0: रखा है। और अब तो भारतीय सरकार, तीन नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत सारे नए साइबर क्राइम्स के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम ज्यूरिसडिक्शन की है, बट हम अकेले नहीं है, सारी दुनिया की भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद भी हमें तो काम करना है, हमें साइबर क्रिमिनल्स को टारगेट करना है। वो टारगेट तब करेंगे जब हम उन्हें पहचान पाएंगे, तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन पर कार्रवाई कर पाएंगे। आज की प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून नहीं है,
1: right.
0: दूसरा डेडिकेटेड साइबर कोर्ट्स नहीं है। आपका नॉर्मल साइबर क्राइम वाला मैटर भी नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। तो अगर आपके साइबर क्राइम वाले मैटर को फैसला आने में 7-8 साल लग जाएंगे तो लोगों का जो विश्वास रहता है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स की आवश्यकता है, डेडिकेटेड साइबर मैजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता है हर इलाके में, ताकि हर प्रकार का साइबर मैटर केवल उनके पास जाए, उन्हें तुरंत पावर्स दी जाए कि तुरंत पैसा आप ब्लॉक कर सके। देखिए, आज जब मेरे यहां से पैसा जाता है तो मेरा पहली प्रायोरिटी होती है कि साहब मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। बंदा पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए मुझे उससे लेना देना नहीं, आप उसे जेल भेजे ना जेल भेजे मुझे उससे भी लेना देना नहीं, मेरा पैसा मुझे दे दें। तो मुझे लगता है आज के सिस्टम में एक खामी है। अगर हम ऐसे प्रावधान ला सकें जहां पर लोगों के पैसे को वापस दिलवा सकें जल्दी तौर पर, वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा एक इंपॉर्टेंट विकल्प होगा। दूसरा है कि आप ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंपनियां हैं, उनकी जिम्मेवारियों को और परिभाषित करें। वो ये ना कहें साहब मुझे तो कुछ नहीं पता, भाई आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ है, आप बैंक हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ, आप कैसे कह सकते हैं मुझे नहीं पता। और आप कस्टमर को कैसे विवश कर सकते हैं, भाई आप साबित दिखाओ, करके दिखाओ भाई मेरे यहाँ मिसयूज हुआ है, मैं विक्टिम बन गया हूँ, अब तो तुरंत आप मेरी बात मानिए और पैसा जो ब्लॉक करिए। लेकिन आजकल बैंक्स भी जो हैं आपकी बात नहीं सुनते।
1: कई केसेस में ऐसा हुआ है कि आप एक व्यक्ति थे, उनके अकाउंट में कहीं से 5-10 हज़ार रुपये आए, अब वो इसकी कंप्लेंट करने के लिए जागरूक नागरिक की तरह बैंक में गए और बताने के लिए कि देखिए मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए। जब वो बैंक में खड़े हुए थे तभी उनके अकाउंट से और भी पैसे उड़ने शुरू हो गए और फिर वो इंस्टेंट एक्शन आप ले नहीं पाते, आपको पता ही नहीं होता आपके साथ हो क्या रहा है।
0: मुझे लगता है अब हमें समझना होगा कि साइबर क्राइम जिंदगी का डेली का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है
1: जी,
0: तो इसलिए घबराना नहीं है। मैं मानता हूं आज केवल 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्हें पता है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में पैनिक नहीं करना, जब पता लग जाए शोर मचाना है, रिपोर्ट करना है और जितनी जल्दी रिपोर्ट करना है। लोग क्या कहेंगे इस थॉट प्रोसेस को भूल जाइए, आज अधिकांश लोग हैं साइबर क्राइम के शिकार बनते जा रहे हैं। तो जितनी आप जल्दी एक्शन लेंगे, प्रेफरेबली पहले 7 मिनटों में एक्शन लेंगे, तो संभावित तौर पर आपका पैसा बचने की पूरी उम्मीद है। जितना आपने डिले कर दिया उतना समय आपने साइबर क्रिमिनल को दे दिया। मुझे लगता है मैसेज जो है ना देना बहुत जरूरी है, तो लोगों की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है इस दिशा में।
1: देखिए मास्टरमाइंड हो गए हैं आजकल हर कोई मास्टरमाइंड वाली जो अप्रोच करता है। फॉर एग्जांपल कल ही ना मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और मेरे जो फोन में था वो कॉन्टेक्ट एड ऑन था भी नहीं, मतलब उसके बाद मुझे आता है मैसेज कि ये रहा चालान और हम दोनों का चालान हो गया, वो APK फाइल थी। आपके सामने कोई ऐसा केस आया?
0: आजकल बहुत सारे ऐसे केस हमारे सामने
1: जाना चाहेंगे बिल्कुल,
0: और बहुत सारे केसेस को मैंने डील किया है। ऑफ लेट एक ट्रेंड आया है जिसे बोलते हैं व्हाट्सएप वेडिंग कार्ड फ्रॉड। आजकल लोग शादियों के कार्ड तो भेजते नहीं है, व्हाट्सएप पर भेजते हैं। अब आप अंधाधुंध होकर उस फाइल को खोल देते हैं, द मोमेंट आप खोलेंगे उसके अंदर API फाइल होती है, ऑटोमेटिकली वो एक मलिशियस कोड आपके सिस्टम में आपके मोबाइल फोन पर रिलीज कर देती है। और वो इस तरीके से होता है कि आपका सारा डेटा उठा लेते हैं, उठा के बाहर भेज देते हैं और आपके पूरे फोन को ब्लॉक कर देते हैं। तो पता लगा आपका कॉन्टैक्ट्स भी गए,
1: आपका फोन
0: कुछ भी नहीं कर पाए। तो आज इस जल्दी में मत रहिए कि साहब ये इसके वेडिंग कार्ड आया है, किसी भी वेडिंग कार्ड को ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ना खोलिए, हो सकता है उसके अंदर मलिशियस कोड हो सकता है। दूसरी बात, आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं कि आपने सिर्फ एक लिंक को क्लिक किया, लेजिटिमेट लिंक है, क्लिक करते ही आपका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया, यहां तक कि फोन का जो कैमरा है और फोन का जो माइक है वो उन्होंने हाईजैक कर लिया और पता लगा आपको कुछ भी नहीं लगा
1: और वो जो बातें हो रही हैं वो भी उन्हें सुनाई दे रही
0: हैं, कॉन्स्टेंटली चारों ओर सुनाई दे रही हैं। मेरे पास एक बहुत अजीब केस आया, ये एक दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल का केस है, 11वीं क्लास का बच्चा है,
1: ठीक है।
0: उसको टीचर ने एक दिन झाड़ दिया कि उसका होमवर्क सही नहीं था, तो उसने कहा चलो मैं सबक सिखाता हूँ। वो जाता है नेहरू प्लेस, वहां से कोई डिवाइस कोई प्रोग्राम लेकर आता है। अगली बार जब टीचर आती है और टीचर की एक खास बात थी कि आके अपना पर्स जो है टेबल पे रखती है और फिर

0: सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें लिखने शुरू करती है। तो टीचर ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें लिख रही है, ये लड़का जाता है और टीचर के फोन पर एक छोटी सी कुछ चीज़ डाल के आ जाता है।
1: ओके
0: और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहता है। 15 दिन बाद एक 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज होती है। उसने क्या किया, एक छोटी सी डिवाइस उस टीचर के पर्स में डाल दी, जो 2400 घंटे सुर सिर्फ जो चीज बोली जा रही थी उसको सुन रहा था, और वो डिवाइस ये इंफॉर्मेशन वापस बाहर भेज रहा था। तो इमेजिन करिए, आप अपना पर्स अपने ड्राइंग रूम में भी ले जाते हैं, बेडरूम में भी ले जाते हैं, तो जितनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन टीचर ने किसी जिसके साथ
1: कर, चाहे आप यूज कर रहे हो ना कर रहे हो,
0: ना कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। पता लगा आपके फोन आपके जो पर्स के अंदर ये डिवाइस बैठा हुआ है, आपको पता नहीं, 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा है, आपके इंफॉर्मेशन को बाहर भेज रहा है, और फिर उसका दुरुपयोग करके उसे इंटरनेट पर डाला जा रहा है, और उसके आधार पर उसको कट पेस्ट किया गया और उसको जानबूझ के एक डीप फेक बनाया गया, और फिर ये मैसेज फैलाया गया पूरे पूरे कंप्यूटर इस स्कूल में कि साहब इस टीचर का फला व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है।
1: ओहो, तो देखिए मतलब आपकी पर्सनल लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो गई।
0: मुझे लगता है कि आज जो है ना आपको गुस्सा कम खाना चाहिए, गुस्सा बच्चों को डांटना कम चाहिए,
1: खाने की बहुत सारी चीजें हैं, गुस्सा
0: ना खाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता, किसी ने आपसे पंगा ले लिया, आपके यहाँ कुछ डिवाइस डाल दी। और एक और आजकल जो नया केस आ गया है वो ये है कि साहब आप कहीं खड़े हैं, कोई बंदा आता है, बंदी आती है कि साहब मेरा ना फोन गुम हो गया, मुझे दीजिए, मुझे
1: कॉल करने दीजिए।
0: बस
1: अमूमन होता है, हर किसी के साथ होता है,
0: और हम लोग दे देते हैं, पता लगता है वो कुछ नहीं कॉल नहीं करती, वो ये कोड डाल देती है, विद द रिजल्ट आपके सारे कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और सारे आपके मैसेज दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, और उसके माध्यम से वो आपके सारे अकाउंट्स को पूरी तरीके से हैक करके मिसयूज कर लेते हैं।
1: ये भी होता है, फलाना कंपनी से हैं सर, सर्वे कर रहे हैं, 4 डिजिट, ये 4 डिजिट जो है ये बहुत सारे बड़ी डिजिट को आपके अकाउंट से गायब कर देता है, तो इस चक्कर में ना रहिए। वेल, ये सारे केसेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं प्रिकॉशन, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन आप क्या ले सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में बात करें तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या कोई ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तो आपको अलाउ तो करना ही पड़ेगा, डिस अलाउ आप कर नहीं सकते हैं। इवन बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जरूरत भी हो गई है, देखिए उससे कैसे बचेंगे।
0: मैं आपको ये तो कह नहीं रहा हूं कि आप हिमालय चले जाइए और संन्यास ले लीजिए, आपको इसी दुनिया में रहना है और इसी इंटरनेट का साथ काम करना है, लेकिन सतर्कता सावधानी के साथ आप अपने आप को बचा सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात कि आप जो चीज सुन देख या पढ़ रहे हैं उस पर तुरंत विश्वास ना करिए जब तक कि आप उसकी स्वयं पुष्टि ना कर गए हों। दूसरी, आप किसी भी कॉल को आप फॉर ग्रांटेड फॉर फेस वैल्यू पर ना ले लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात करनी है, कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, अपने फोन को कमरे से बाहर रखिए। कमरे से बाहर नहीं रख सकते तो अपनी जहाँ आपकी लोकेशन है वहाँ से 12 फीट की दूरी पर रखिए ताकि आपकी आवाज़ आपकी इन्फॉर्मेशन जो है फोन ना उठा सके। चौथी महत्वपूर्ण बात,
1: 12 फीट सर, 1 फीट दूर नहीं रख पाते हैं हम
0: तो, 12 फीट की बात कर रहे हैं ताकि भाई वो आपका सिग्नल कनेक्ट ना कर सके। चौथी बात, हम लोग ना आज इंडिया में 2 रेवोल्यूशंस को देख रहे हैं, ये दोनों ही क्रांतियां चल रही हैं। पहली है भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। आज सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, इंटरनेट पर हो, AI पर हो। कृपया इस भारत की उल्टी की क्रांति का हिस्सा ना बनिए, हर चीज हर आदमी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, एक और महत्वपूर्ण जो क्रांति चल रही है उसे बोलता हूं ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। आज भारत में हर आदमी रिकॉर्ड करने की फिराक में है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है पता नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद भूल रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग में रखा रहा हूं, मैं क्लाउड पर डाल रहा हूं। उस दिन मेरे पास एक केस आया बच्चे का जिसने 15 अश्लील वीडियो अपने आसपास की परिचित महिलाओं की बनाई और गूगल ड्राइव पर डाल दी, और फिर गूगल ने जाकर पुलिस को बताया कि साहब देखिए अश्लील कंटेंट आया, उस बच्चे को फिर कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये सोचें कि साहब आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके बारे में शिकायत नहीं करेगा, सबसे बड़ी गलती है। इनफैक्ट अश्लील कॉन्टेंट आप प्रकाशित क्यों करें, सारी दुनिया को बताने की क्या आवश्यकता है। आपको समझना होगा कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो कहता है कि अगर आप अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेंट का प्रकाशन करते हैं, प्रसारण करते हैं, प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर आप स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश या प्रमोट करते हैं,
1: अपलोड करते हैं,
0: खुद भी करते हैं, इनफैक्ट लोग समझते हैं भाई मैं तो अपने आप को बिना तस्वीर के बिना कपड़ों के
1: कूल शूट कर रहा हूं, क्या कूल मीडिया।
0: भाई आप जब अपनी भी अश्लील तस्वीर खींचते हैं तब भी आप अपना जुर्म करते हैं, क्योंकि लॉ कहता है कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते या पब्लिशिंग या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान नहीं कर सकते। अगर आप एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिशर ट्रांसमिट करेंगे, 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी करेंगे, यानी कि एक कोई व्यक्ति जो 18 साल से नीचे हो उसकी अश्लील कंटेंट को प्रकाशित करेंगे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा, 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है, नॉन बेलेबल है, बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो प्लीज आप समझ लीजिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आईज ऑफ लॉ, क्योंकि आप कानून से अनभिज्ञ हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कानून आप पर लागू नहीं होगा, कानून कहता है कि साहब आप कानून के दायरे में रहिए, कोशिश करिए अपने डिवाइसेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बनाएं लेकिन अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु ना बनाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक हो सके अपनी इंफॉर्मेशन को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें, सारी दुनिया के साथ सारी चीजें साझा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और ये बुनियादी तौर पर अगर आप चीजें अडॉप्ट करें और अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें तो काफी हद तक आप इस तरह के साइबर क्राइम के फ्रॉड्स या उसके विक्टिम्स होने की दिशा में बचाएंगे।
1: साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल के लिए, चाहे कोई काम करता हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, या फिर अपने प्रोडक्ट को रिवील करना चाहता हो आगे आकर।
0: मुझे लगता है कि आज जिंदगी में अगर आपके पास सबसे महत्वपूर्ण कोई वेक्टर है तो वो साइबर सुरक्षा है। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि साहब मैंने तो डिवाइस में मुझे जो करना कर दूं लेकिन कुछ गड़बड़ होगी सरकार देखेगी। भाई सरकार तो अपना काम कर ही रही है लेकिन साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी भी तो है। हमें समझना है कि हम एक बहुत बड़ी चेन की कड़ियां हैं और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी, और हमारा दायित्व बनता है कि हम उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने। तो साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के रूप में अडॉप्ट करें, अनसिक्योर साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज को, हैबिट्स को बिल्कुल इग्नोर करिए, पासवर्ड शेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपना फोन किसी को भी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी और का यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तब आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करते हैं जिसमें 3 साल की सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है।
1: तो ऐसे में कई केसेस में हुई है लोगों को,
0: बहुत सारे केसेस में हमने प्रोसिक्यूशन करी है जहां पर मेरा पासवर्ड किसी और व्यक्ति ने इस्तेमाल किया और मैंने शिकायत करी और फिर केस दर्ज हुआ और फिर कार्रवाई शुरू हुई। भाई सवाल कानून कहता है ना कि पासवर्ड मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अगर आपको दे भी दिया तो ये तो मेरे घर की चाबी है ना,
1: शेयरिंग इज केयरिंग नहीं है, मतलब
0: बिल्कुल नहीं। आपको मैंने कभी भी अलाउ नहीं किया कि साहब मेरे घर की चाबी मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करके घुस घर के अंदर घुस जाओ और जो लेना है लेके चले जाओ। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सब भारतवासियों को निजता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, धारा 21 भारतीय संविधान के तहत।
1: चलिए जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि नहीं पहुंच पाता है वहां पर कहीं ना कहीं बास जैसी पैनी निगाह पहुंच जाती है काफी सारे लोगों की। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है पवन जी कि आप प्रॉब्लम में, आपको बताया कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए, आप बैंक के पास जा रहे हैं और आप समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं आइडिया है, लेकिन मेरा पैसा लौटा दो। और ऐसे में बैंक मैनेजर के साथ आपकी काफी वार्तालाप होती है, काफी बहस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पाते हैं इन चीजों को आप।
0: उसका रीजन ये है कि बैंक मैनेजर के हाथ में कुछ भी नहीं है। द मोमेंट आपके यहाँ पैसा जाता है आपका पहला विकल्प है आपने 1930 कॉल करना है, ताकि आपकी जो बैंकिंग सिस्टम में कोई पैसा है तो पुलिस उसको तुरंत फ्रीज कर सके। दूसरा आपने रिपोर्ट करनी है cybercrime.gov.in, वो जैसे आप रिपोर्ट करोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप बैंक के साथ शेयर करिए ताकि बैंक उस पर आगे कार्रवाई हो सकता है। आप जाके वहां लड़ेंगे, उन पर विवाद करेंगे, साहब मुझे पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना लिखतम के आगे बख्तम की कीमत नहीं होती, तो आपकी लिखत में जब कंप्लेंट होगी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, वो अगर आप लिखत में बैंक को देंगे तो बैंक तुरंत एक्शन करेगा।
1: वो जवाबदेही वाला प्रोसेस होता है ये कितने टाइम का होता है, या फिर अगर नहीं आता है जवाब तो क्या कर सकते हैं आप?
0: आपको ना कॉन्स्टेंटली पैरवी करनी पड़ेगी। पहली बात आपने शिकायत करी, उसके हर 2 दिन बाद आपने उस शिकायत का आपने पूछना है कि भाई क्या हुआ,
1: अपडेट है।
0: जैसे आप अगर आप cybercrime.gov.in पर जाएंगे और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आपको एक SMS आ जाएगा कि फला पुलिस ऑफिसर है, ये इसका नंबर है, ये आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अब आप हर रोज एक धर्म बना लीजिए कि आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉल करना है, भाई मेरा क्या हुआ क्या हुआ। वो कहता है ना पैरवी आपको वहां तक ले जाएगी जहां पर मुकदमा भी नहीं ले जा सकता। जितनी जल्दी आप पैरवी करेंगे, बैंक के साथ पैरवी करेंगे, उतनी जल्दी आप सीरियसनेस अपनी शो कर पाएंगे और उतनी जल्दी हो सकता है आपको रिलीफ भी मिल जाए। आज आप जैसे हम जैसे लोग ही सबसे वल्नरेबल टारगेट्स हैं। एक बार अगर हम जाग जाएंगे इस चुनौती के प्रति तो फिर एटलीस्ट हम काम करना शुरू कर देंगे, दैट इज 50% ऑफ द बैटल वन। लेकिन अगर हम इसी मस्ती में होंगे साहब मेरा क्या, बच जाएगा, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा तो कुछ कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
1: स्मार्ट और ओवर स्मार्ट होने में थोड़ा सा फर्क है, राइट?

0: ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको मुंह की देगा और अक्सर आपको प्रॉब्लम में डाल देगा।
1: बिल्कुल, देखिए इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति फंस चुका है, उसे पता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प है नहीं, मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए कोई लीगल रेमेडीज?
0: देखिए अगर आप तुरंत शिकायत करते हैं तो पहली रेमेडी वो है, क्योंकि उस शिकायत के एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है
1: जी।
0: अगर आप तुरंत 1930 पर कॉल करते हैं तो वो तुरंत देख लेते हैं कि आपके बैंकिंग चैनल में कोई पैसा है तो नहीं है, अगर है तो ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक कराइए अपना पैसा ताकि अल्टीमेटली 5-6 हफ्ते में पैसा वापस आ जाए।
1: जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ है।
0: हाँ, और तीसरी बात, अगर आपको लगता है पुलिस एक्शन नहीं करती तो आप अपने लोकल थाने में, अपने लोकल मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाके एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि साहब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हें आप दिशा निर्देश दें कि साहब आप मेरा पैसा वापस दीजिए। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट देखेगी भैया उस अक्यूज के अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। अगर आप जितनी जल्दी एप्लीकेशन मूव करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अदालत डिसाइड करेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन पहले चली गई तो जितना पैसा फ्रीज हो गया उसमें पहला अमाउंट आपका जाएगा, आपके अमाउंट खत्म होने के बाद किसी और को दिया जाएगा। तो जागरूकता इतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लीगल रेमेडीज आपके पास उपलब्ध हैं, ये तमाम सारी घटनाएं जो हैं ऑफेंसेस बन जाती हैं भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, भारतीय न्याय संहिता में। आवश्यकता है आपको सतर्क, जागरूक और सावधान रहने की।
1: देखिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ डिजिटल अरेस्ट किया और जब वो मुकदमा वहां तक पहुंचा और अगर उसने वो पैसे खर्च कर दिए या उसके अकाउंट में है नहीं, तो इस केस में क्या होता?
0: फिर देखिए उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है और अल्टीमेटली उसको सजा मिलती है, और तब तक कानून का ये भी अधिकार है कि अगर उसके पास कोई भी एसेट्स हैं तो उन एसेट्स को भी फ्रीज किया जा सकता है और उनको भी सेल करके वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। तो कानून के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अक्सर लोगों तक पहुंचने का पहला चैलेंज होता है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि साइबर क्राइमल वो कौन सा था जिसने आपको डिजिटल अरेस्ट किया, क्योंकि देखने में कुछ और हो सकता है, वास्तविक तौर में कुछ और हो सकता है। और आज की तारीख में तो डिजिटल अरेस्ट में एआई का बहुत ज्यादा दखलअंदाज हो गया है
1: जी।
0: आप जो देख रहे हैं वो व्यक्ति वास्तविक तौर पर व्यक्ति नहीं है, वो एआई द्वारा जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो है। अब डीप फेक वीडियो अगर है तो फिर आप उस साइबर क्रिमिनल तक कहां पहुंचेंगे कि किसने अपलोड किया, कौन था उसका मास्टरमाइंड उसके पीछे। तो चुनौतियां बहुत होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहला कदम होता है उठ के जागना, और हमें ये लगता है कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं, तो एटलीस्ट उठ जाइए, रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करेंगे तो कानूनी प्रकरण आगे बढ़ेगा, रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला।
1: अब सरल भाषा में पूछना चाहूंगा, जितने भी स्कैमर्स हैं उनको पहचानने का, या स्कैम आपको ईमेल आ रही है, इन सबको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे सिंपल
0: तरीका, कुछ भी चीज आपको जो बताती है जो टू गुड टू बी ट्रू है तो एक्चुअली में टू गुड टू बी ट्रू होता है। कभी लगता है सपनों जैसे, भाई मेरे को खबर आई कि आरबीआई मुझे 50 लाख रुपए दे रहा है लॉटरी के तौर पे, भाई मुझे 50 लाख क्यों देगा? लेकिन लोग जो है भेज जाते हैं कि साहब मैं ही दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं कि मुझे आरबीआई लॉटरी 50 लाख रुपए की लॉटरी दे रहा है। तो पहला इंडिकेशन है कि साहब ये साइबर फ्रॉड है, ये साइबर क्राइम का एक नया स्वरूप है। तुरंत उस कम्युनिकेशन को डिसरिगार्ड करिए, भूल जाइए कि आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, सॉरी, आज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज आप प्रोटेक्टेड होंगे तो कल नया दिन होगा, आप फिर कुछ काम कर पाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि जहां पर आपका मन ठुके कि साहब ये ठीक नहीं है,
1: कुछ घपला है,
0: द मोमेंट ये मन है ना, इस मन का विश्वास जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा हमारे को बचाएगा, हमारी गट फीलिंग हमेशा बचाएगी। हमारा दिमाग तो फिर भी बता देगा, ओहो चले यार इतने पैसे मिल रहे हैं, करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है,
1: क्या जाता है।
0: लेकिन अगर आपने अपने आप को बांध लिया कि साहब भैया मुझे मिलना तो उतना है जितना मेरे माथे पे लिखा हुआ है, तब मैं इन छोटे प्रलोभनों में नहीं पड़ूंगा। देखिए एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि भारतवर्ष में कोई डेडिकेटेड आज की तारीख में लॉ लागू नहीं हो रखा डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो हमारा डेटा बिकता है नेहरू प्लेस जैसे मार्केट्स में, ऑनलाइन मार्केट्स में। और हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा 13 नवंबर 2026 को, लेकिन उससे पहले आपके डेटा की खरीद फरोख्त बहुत चल रही है। मेरे पास तो कुछ क्लाइंट आते हैं जो डेटा मर्चेंट्स हैं, मतलब मैंने कहा भाई ये क्या चीज है,
1: वो कहते हैं, मैं भी नया सुन रहा हूँ वर्ड,
0: मैंने कहा क्या होता है डेटा मर्चेंट, वो कहते हैं सर एक नया बिजनेस मॉड्यूल है,
1: ठीक है,
0: हम क्या करते हैं, हम 20 या 25 लोगों को रिक्रूट करते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे लिए काम करिए, हम आपको मंथली सैलरी देंगे, आप हमसे सैलरी लीजिए, लेकिन एक भी दिन हमारे दफ्तर मत बताइए, आप जाके दूसरी कंपनियों में जाइए और जाके अपना जॉब लीजिए, आप वहां नौकरियां करिए, वहां से भी पैसे लीजिए, उनका डेटा लीजिए।

0: वो डेटा चुरा के हमें दीजिए, हम वो डेटा की क्लीनिंग करेंगे, उसको सैनिटाइज करके और करके पूरे मार्केट में बेचेंगे। तो ये एक नया प्रकार का मॉडल इंडिया में आ गया है। दूसरा एक नया मॉडल आ गया है, वो है साइबर क्राइम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। साइबर क्राइम आज इतना ज्यादा पनप चुका है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर छोटे छोटे गाँवों में कस्बों में बन चुका है। यहां तक पहले हम बात करते थे जामतारा की, फिर बात करने लगे हम नू की, भरैच की और अदर इंस्टीट्यूशंस की। आज तो हर गांव में, हर छोटे शहर में आपको साइबर क्राइम के अड्डे मिलते हैं। लोगों को पता है कि भैया पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका जो है साइबर क्राइम है। और दूसरी बात भाई, भारत क्राइम में, भारत में साइबर क्राइम कन्विक्शन तो होती नहीं है। 2003 में मैंने भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन कराई थी, जिसमें मैं वकील था।
1: 2003
0: में कंप्लेनेंट की तरफ से, आज 23 साल हो चुके हैं। और उस जमाने में भी हमने जज को बोला कि साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप सजा दें। लेकिन जज ने कहा साहब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, चलो उन्हें प्रोबेशन पे एक साल पे छोड़ देते हैं। वो कन्विक्शन थी। उसके बाद कुछ कन्विक्शन हुई 2008 तक, लेकिन 2008 में हम लोगों ने एक बुनियादी गलती कर ली। हम लोगों ने आईटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और इन संशोधनों ने 2-3 साइबर क्राइम्स को छोड़ के बाकी तमाम सारे साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध बना दिया। यानी कि
1: दो तीन वो कौन से,
0: दो तीन जैसे साइबर टेररिज्म हो गया, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, जैसे एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे साइबर क्राइम आज अवेलेबल हैं। मतलब कि अगर मैं साइबर क्राइम करता हूं तो मुझे बेल अधिकार के तौर पर उपलब्ध है। तो होता होने क्या लगा कि लोग साइबर क्राइम करते, बाहर बेल पर आते, डर कुछ था नहीं, बेल से बाहर आते, अपने वर्कअप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिलीट करते और फिर मस्ती से तमाशा देखते। क्योंकि अगर एविडेंस ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो सजा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर ही सजा हो सकती है। तो तभी हम देख रहे हैं कि 2008 के बाद से भारतवर्ष में आज तक साइबर क्राइम का एक अकाल आ चुका है कन्विक्शंस को लेकर। तो इसलिए लोगों को लगता है भाई क्या फर्क पड़ता है, मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लोग अंधाधुंध होते हुए साइबर क्राइम को अडॉप्ट कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि साहब इस भंवर में जो फंस गया वो फंस गया। लेकिन 99.9% लोगों को लगता है भाई हम तो भारी निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशियो है वो 0.1% से भी नीचे है। तो जब अगर आप देख लीजिए कि 100 मुकदमे होते हैं और उन 100 मुकदमों में 0.1% केसेस में ही सजाएं होती हैं, वजह सजा होती ही नहीं है, क्योंकि एविडेंस ही नहीं होगा तो सजा नहीं होगी।
1: तो ऐसे लोगों को काउंटर कैसे किया जाए?
0: तो मुझे लगता है काउंटर करने के लिए आपको एक लोगों में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, ताकि लोग अवेयर हो जाएं नए उभरते साइबर क्राइम के को लेकर। और आज तो नया प्रॉब्लम है, आज एक नए प्रकार का साइबर क्राइम उत्पन्न हुआ है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम, AI क्राइम।
1: उससे तो सब डरे हुए आने वाले समय में, आई गेस।
0: AI तो इतना खतरनाक हो गया है कि आपको कुछ नहीं करना, मुझे आपको तंग करना है, मुझे सिर्फ आपकी आवाज की 3 सेकंड का सैंपल चाहिए, आपके वीडियो का 5 सेकंड का सैंपल चाहिए बस,
1: और उससे कुछ नहीं चाहिए। हाफ एन आवर का और पूरे घंटे
0: का मैं आपके आपके बरखिलाफ एविडेंस बना सकता हूं। मेरे पास उस दिन एक क्लाइंट आया, उन्हें कहा साहब मेरी शादी हो रखी है, 10 साल हो चुके हैं, मेरी वाइफ से मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तलाक लेना है। तो हमने कहा भाई क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए तो सही।
1: मैंने
0: कहा सर मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ। उसने मुझे एविडेंस दिखाया और वो वाइफ इतनी बदतमीजी तरीके से हस्बैंड को बात कर रही थी, मुझे लगा कि साहब इन दोनों का रहना बिल्कुल संभव नहीं है, तो चलो हम डिवोर्स फाइल करते हैं। मैंने डिवोर्स पिटीशन बना दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना वाइफ की, वो जरूर लगाइएगा अदालत में। तो हमने लगाना शुरू किया और साथ साथ सर्टिफिकेशन डालनी शुरू करी। तो जब सर्टिफिकेशन में उससे सवाल पूछे कि भाई क्या कहाँ हुआ, क्या पता लगा, किस डिवाइस से हुआ, अल्टीमेटली उसके मुंह से निकल गया सर मैंने इसे AI से बनाया था। तो आज ये
1: मतलब AI के थ्रू आपने किसी को पूरे तरीके से मतलब बहुत गलत ठहरा दिया।
0: एक पति ने अपनी पत्नी के बरखिलाफ AI के माध्यम से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए और उसको आधार बनाते हुए मुकदमा दाखिल करने की प्रयास किया। वो तो जब मुझे रियलिटी पता लगी हमने कहा साहब हमें माफ करिए, हम
1: ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता।
0: हो सकता है अगर शिकायत हो, लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर शिकायत होती नहीं, और शिकायत हो भी जाए तो अक्सर FIR नहीं होती। प्रॉब्लम क्या ना कि अधिकांश तौर पर पुलिस आपके केसेस दर्ज नहीं करती, अगर दर्ज करती भी है तो उन केसेस में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम सही तरीके से एकत्रित नहीं कर पाते, एकत्रित भी कर पाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही तरीके से हम अदालत में प्रस्तुत साबित नहीं कर पाते भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत। तो बुनियादी तौर पर कितना ही बेहतरीन आपका केस क्यों ना हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप साबित ना कर पाए तो सजाएं नहीं होंगी।
1: ये दोनों तरफ से देखिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो भी कह सकता है कि मैं AI, ये तो AI है सर।
0: आज की तारीख में तो स्टैंडर्ड डिफेंस आ गया ना, कि अगर आपने मेरे बरखिलाफ एलिगेशन लगाई

0: उसको साबित करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है. उसके लिए नए कानूनी प्रावधान आने की आवश्यकता है. फॉर्चुनेटली अब खबर आई है
1: ओनली फॉर अपग्रेड करना पड़ेगा.
0: जी हाँ, तभी अब खुशखबरी यह है कि अब सरकार की तरफ से खबर आई है कि सरकार अब एक नई डेडिकेटेड लॉ पर काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर. तो मुझे लगता है ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा. साइबर क्रिमिनल्स आज की तारीख में पुलिस से लगभग 50 कदम आगे चल रहे हैं और एआई आने के साथ साथ 50 कदम तो छोड़िए वो 500 कदम आगे होने वाले हैं.
1: और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप उस व्यक्ति की सहमति भी नहीं ले रहे हैं. आप बहुत सारे एक्टर्स के वीडियो देख सकते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है या उनकी वॉइसेस कहाँ कहाँ पर चल रही है, और फैंस को भी लगता है कि हाँ चलो उन्हीं की आवाज है.
0: यही तो प्रॉब्लम है. तो अगर आप तो बहुत बड़े अभिनेता हैं, एक्टर हैं, तो आप अदालत जाएंगे और अपने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कराएंगे. लेकिन आम जनता
1: हम जैसे लोग क्या करेंगे?
0: कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नॉर्वे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है. इस नॉर्वेजियन कंट्री ने एक नया लॉ बनाया है कि साहब आप हम अपने कॉपीराइट लॉ में संशोधन करते हैं. हर व्यक्ति को अधिकार है अपने पर्सनैलिटी राइट्स का, यानी कि आपको अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है. आपकी पर्सनैलिटी है, मैं ऐसे बोलता हूँ,
1: मेरी आवाज
0: ऐसी है, मेरी शक्ल है, ये मेरा इतना अंदाज है, ये इस पे मेरे ऑटोमेटिक राइट्स होने चाहिए,
1: कॉपीराइट होने चाहिए ऑब्वियसली.
0: और मुझे ये ताकि कोई उसका हनन करता है तो मैं उसके बरखिलाफ जा सकूं. मुझे लगता है इस तरह के प्रावधान अगर भारत में आ जाए तो भारतवासी के हाथों को हम ज्यादा सशक्त कर पाएंगे. दूसरा मुझे लगता है कि डीप फेक को लेकर डेडिकेटेड लीगल प्रोविजन आने जरूरी है. और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब AI का इतना महत्वपूर्ण दुरुपयोग हो रहा है तो AI की जवाबदारी भी तो होनी चाहिए. AI को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि साहब ऐसा है, AI का दुरुपयोग अगर है तो कौन जिम्मेवार है? कंपनियां तो कहती हैं कि साहब ये ले लीजिए, आपको मैं AI ब्लैक बॉक्स के तौर पर दे रही हूं, इस्तेमाल करना या ना करिए. अब तो बल्कि फॉरेन कंपनियों ने बहुत बड़ा एक नया तंत्र शुरू किया है.
1: जी क्या है
0: वो? ये है कि वो 399 का तंत्र. वो क्या करते हैं कि आपको अपने पूरे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज एक महीने के लिए 399 रुपए के पैक में दे देते हैं.
1: सिर्फ
0: अब 399 रुपए में तो आपको दो पिज्जा भी अच्छे नहीं मिलते,
1: नहीं तो मिलते सर.
0: और 399 रुपए में वो आपको पूरे महीने भर के आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रहे हैं, आपका डेटा ले रहे हैं, आप डेटा का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम्स को, अपने एल्गोरिदम्स को और ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं, और फिर वही इंप्रूव्ड वर्जन्स आपको दोबारा बेचेंगे. तो मुझे लगता है कि AI को अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है. इस संदर्भ में मैंने ऑलरेडी एक AI अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क प्रकाशित किया है जो विभिन्न प्रकार के कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है कि साहब इन बेसिस पर आप AI को जिम्मेवार या अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. लेकिन बात यहीं पर ही थम नहीं रही है. अब एजेंटिक AI आ गया है, यानी कि लोग अब AI एजेंट्स इस्तेमाल करने लग गए हैं. आप सिर्फ उन्हें एक कमांड दे दीजिए, उसके बाद वो कमांड को पूरी तरीके से खुद डिवाइड करेंगे, सब टास्क को लेंगे और फिर वो उसके ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देंगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. उनको जिम्मेवार कैसे ठहराया जाए, इसके लिए भी अभी हमने एक ग्लोबल एजेंटिक AI लाइबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया है. तो काफी सारा काम करने की आवश्यकता है. लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि साहब हम लोग कॉन्स्टेंटली एक जो दौड़ता हुआ शेर है उसकी सवारी कर रहे हैं, हम इस शेर से नीचे तो नहीं आ सकते. तो कॉन्स्टेंटली इस शेर की सवारी करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और अपने आप को कॉन्स्टेंटली ढालना पड़ेगा नए नए समय, नए नए टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स के साथ साथ, ताकि हम और हमारा डेटा उनका संरक्षण हो सके.
1: बिल्कुल, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रौनक आ जाती है बड़े बुजुर्गों के आ जाने से. अक्सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले वो आपने काफी सारे मैसेजेस देखे होंगे और उनके साथ जब डीप फेक कुछ होता है ना तो वो सबसे पहले घबराते हैं. ऐसे में आपको घबराना नहीं है, लेकिन सर बहुत ही तेज तर्रार तरीके से आपने सारे जवाब दिए हैं. चलिए रैपिड फायर की तरफ लेकर चलता हूं आपको, ठीक है
0: जी.
1: और सबसे पहला सवाल मेरा ये है रैपिड फायर राउंड में, पासवर्ड और पास फ्रेज, विच वन इज सिक्योर्ड?
0: पास फ्रेज, क्योंकि पास फ्रेज ज्यादा बड़ा होता है, पासवर्ड छोटा होता है. और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप पास फ्रेज भी बनाना है तो अपनी लोकल भाषा में पास फ्रेज बनाइए
1: ताकि कोई उसे डिकोड ना कर पाए,
0: डिकोड ना कर सके. हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने पास फ्रेज का एक नया अध्याय हमें सिखाया. उसने कहा साहब मैं पास फ्रेज इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने कहा आप बताइए आपका करंट पास फ्रेज क्या है. उसके वो उसका जवाब था मेरा करंट पास फ्रेज है मैं चलता जा रहा हूँ #@
1: क्या बात
0: है? सब अंग्रेजी में, मैं मींस MAIN चलता CHLT है. इतना लंबा आप पास फ्रेज करेंगे ताकि सिस्टम या हैकर जो है आपके पास
1: सोच ही ना सके
0: उसे ब्रेक ही ना कर सके.
1: बिल्कुल, कहां जा रहा है पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड कहीं भी जाए, पास फ्रेज कहीं भी जाए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और VPN यस और नो, सेफ है VPN?
0: बिल्कुल सेफ है. VPN का इस्तेमाल करना जरूरी होता है ताकि आप अपने

0: लोकेशन की, अपने डेटा का संरक्षण कर सके।
1: क्या बात है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा, फेस आईडी और फिंगरप्रिंट दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है।
0: दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेस में फिर भी गड़बड़ की जा सकती है। ये फिंगरप्रिंट दुनिया भर में एकमात्र ऐसा प्रिंट है।
1: ये हो सकता है ना बियर्ड आपकी बढ़ जाए, कहीं
0: आपकी बियर्ड बढ़ जाए, आपकी शेप। अब तो क्या ना, अडोब से फोटोशॉप से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से फोटोशॉप करना मुश्किल होता है। तो फिंगरप्रिंट कंटिन्यूज टू बी नंबर वन,
1: सेफेस्ट है। वन साइबर सिक्योरिटी हैबिट जो हर किसी को अपनी लाइफ में लेकर आनी चाहिए, एक ऐसी हैबिट जो साथ हो आपके।
0: मैं आपको एक नहीं दो हैबिट्स बताता हूं।
1: ओके,
0: एक कंजूस हो जाइए, दूसरा शकी हो जाइए। कंजूसी अपने डेटा को लेकर, अपने डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करिए, किसी और के साथ नहीं। और शकी, हर जानकारी को शक के दृष्टिकोण से देखें, जब तक कि स्वयं उसकी पुष्टि आपने ना कर रखी हो। तो शकी हो जाइए और कंजूस हो जाइए, काफी हद तक आप साइबर क्राइम से बच जाएंगे।
1: मतलब थोड़ा सा डेली सोप वाले एक्टर की तरह आपको काम करना पड़ेगा। वेल सर, मैं आपको शुरुआती दौर में कहना भूल गया, यू आर सो लाइक हैंडसम, एंड यही कहना चाहूंगा, बहुत स्मार्टनेस के साथ सारे जवाब दिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं, हर रोज दोहरा रहे, उससे बचना चाहिए।
0: एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं, वो अपने स्मार्टफोन को रिलाय करते हुए कर रहे हैं। हमारा स्मार्टफोन, हमारा अपने जब आप फोन स्मार्टफोन के कैमरे से फोटो ऑनलाइन खींचते हैं और अपलोड करते हैं, तो रिमेम्बर करिए वो नॉर्मल फोटो नहीं है, वो स्मार्ट फोटो है। उसमें आपका लैटिट्यूड है, आपका लॉन्गिट्यूड है, आपका मेटा डेटा है, आपका डिवाइस इंफॉर्मेशन है। वो तमाम सारी चीजें जब आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया भर के चोरों को आमंत्रित कर रहे हैं कि साहब मैं यहां लोकेशन हूं, मेरी यहां लोकेशन है, आपने आके मुझे अटैक करना कर लीजिए। तो कृपया अपने स्मार्टफोन के द्वारा खींची हुई फोटो तब तक इंटरनेट पर मत डालिए जब तक आप उसे सैनिटाइज ना कर सकें, उसका मेटा डेटा पूरी तरीके से।
1: सैनिटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
0: सैनिटाइज करने के बहुत से टूल आ जाते हैं जो आपका जो मेटा डेटा होता है उसमें से निकाल देते हैं, आपकी लोकेशन निकाल देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल देते हैं।
1: अगर मैं लोकेशन डाल नहीं रहा हूं तो भी लोगों को लोकेशन पता लग जाए
0: ऑटोमेटिकली। मैं आपके यहां बैठा हूं, आज आपने मेरे फोन से तस्वीर खींच ली, मैंने अपलोड करी, मेरे स्मार्टफोन वाली तस्वीर में आपका लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया, मेटा डेटा आ गया, मेरे मोबाइल फोन का क्या डिवाइस है, कौन सा मॉडल है, किस प्रकार के फंक्शन है, वो तमाम सारी चीजें आ गई,
1: तुम्हें जाकर
0: बहुत सब आ गई, और आपने बिना सोचे समझे उसको ऑनलाइन कर दिया। ये तो वही हालत हुई ना कि हमारे क्लाइंट थे, ये डेल्टा वेव के बाद बहुत तंग आ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो भैया हम वेकेशन करने चलते हैं। तो कहां चले? मनाली चलते हैं। लेकिन मनाली तो कभी गए नहीं थे, तो लोगों से पूछा भाई क्या करें, तो लोगों ने अलग अलग सजेशन दिया ऑनलाइन। तो उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग निर्णय लिया कि हम हर घंटे जहां पे भी होंगे हम एक वीडियो ब्लॉग डालेंगे। तो वो यहां से मूर्थल गए, वहां से वीडियो ब्लॉग डाला, ऊपर रोहतांग पास गए, वहां ब्लॉग डाला। 8 दिन बाद जब वो घर वापस आते हैं गुड़गांव में, तो पाते हैं उनका सारा घर सफा चट हो चुका है, एक भी चीज घर में नहीं थी, क्योंकि चोरों को उन्होंने
1: पता लग गया, आमंत्रित किया।
0: उन्होंने बताया कि साहब ये तो वहां पर अभी रोहतांग पास पर हैं, ये इनके लैटिट्यूड, इनका लॉन्गिट्यूड, अभी तो आ ही नहीं सकते।
1: मतलब चोर भी बैठे होंगे, कह रहे होंगे रुक जाओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अभी दूर है,
0: अभी 8 दिन है हमारे पास, आराम से चोरी करते हैं, घर से सारी चीज निकाल लेते हैं। तो कोशिश करें ये तमाम सारी चीजें अपनी गर्दन अपने हाथ काट करके साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में ना दे दीजिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग आप ही के खिलाफ होने वाला है।
1: क्या बात है, इनकॉग्निटो मोड ये कितना सेफ है?
0: बिल्कुल सेफ नहीं है। इनकॉग्निटो मोड सिर्फ आपको एक
1: झांसा दे रहा है,
0: झांसा अपना अपने मन को बहलाने का एक और तरीका है। रियलिटी इनकॉग्निटो मोड कुछ नहीं होता। आज की साइबर सारे, चाहे आपके ब्राउजर्स हो, चाहे आपके सर्विसेज हो, इनकॉग्निटो मॉडियम के मोड के माध्यम से आपकी तमाम सारी जानकारी फिर भी ले रहे हैं। तो इस दुनिया में जो चीज मौजूद नहीं है उसकी आप उम्मीद ना करें, और इनकॉग्निटो मोड के बेसिस पर वो कुछ गलत काम ना कर दें जो आने वाले समय में आपको भारी पड़ सकते हैं।
1: क्या बात है, ये सबसे बड़ा है कि कहीं ना कहीं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सुरक्षित रखते हैं।
0: बिल्कुल भी नहीं, सबसे बड़ा मिथ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम की चीज पूरी सुरक्षा देते नहीं है। वो तो एक छोटी सी बात बताते हैं कि साहब ये हमारे सॉफ्टवेयर हमारे डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस का एंटीवायरस या वायरस आपके सिस्टम में नहीं है। मुझे लगता है आपको ब्रॉड चीज देखनी है। देखिए, अगर मैं सिर्फ पूरे अपने घर में जिसमें 5 दरवाजे हैं एक ही दरवाजे पर ताला लगाऊंगा, बाकी 4 खुले रखूंगा, तो गलती मेरी है, क्योंकि चोर उन 4 दरवाजों से मेरे घर के अंदर आएंगे। तो कोशिश करें एंटीवायरस के साथ साथ और स्ट्रेटजीज भी अडॉप्ट करें, अच्छा फायरवॉल रखें, साथ ही साथ अपनी सेल्फ कंट्रोल करें, अपनी जानकारी शेयर ना करें। हमारे पास एक केस आया जहां पर एक बंदे ने अपने ना सेंसिटिव पर्सनल मोमेंट्स को कैप्चर किया,
1: और वो बंदा बहुत ज्यादा क्रेज नहीं हो गया
0: वो बंदे की, मुझे पता ही नहीं हालत क्या थी भाई, जनवरी में शादी हुई और शादी के लिए हनीमून गए आप गोवा और हस्बैंड वाइफ ने एक पैक्ट किया,
1: आई लव माय हस्बैंड या आई लव माय वाइफ,
0: उन्होंने पैक्ट किया, पैक्ट ये किया कि साहब हम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट के मोमेंट्स अपने फोन पर रिकॉर्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई आजीवन फिर देखेंगे और आनंद लेंगे। और उसके 15 दिन बाद लड़ाइयां शुरू हो गई और दोनों के बरखिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंटें शुरू हो गई कि इन्होंने हमारे प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें जो है उसकी खींच करके
1: दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाला
0: और फिर अल्टीमेटली तलाक शुरू हो गया। तो बॉटम लाइन है भाई वो चीज क्यों करनी है जिसके लेके कल को प्रॉब्लम होने वाली है।
1: और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है सर कि अगर आपने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया, सबसे पहली बात तो नहीं करना चाहिए,
0: बिल्कुल नहीं,
1: लेकिन उसके बाद भी अगर आपका फोन चोरी हो गया तो सारा डेटा रिवील्ड हो सकता है,
0: बिल्कुल
1: सच्चाई है,
0: बुरी सच्चाई है। और दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि सुरक्षित तौर पर मैं इसको बैकअप ले लेता हूं तो मेरा बैकअप ऑनलाइन चला गया तो मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास चला गया, एक तो सर्विस प्रोवाइडर मेरी शिकायत करेगा, दूसरा कल मेरी कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो सकती है, तीसरा कल को मैं अपनी जॉब बदलता हूं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज पर जाता हूं, ये चीज मेरे को आड़े आएगी, और चौथा मेरी प्राइवेसी तो पूरी तरीके से लुप्त हो जाने वाली है। तो ऐसा काम करें क्यों, मुझे लगता है कि वो चीज ना करें जिसका एक इम्पैक्ट आप पर, आपके फ्यूचर पर आ सकता है। और मुझे लगता है अपने पर्सनल मोमेंट्स को तो कभी भी डिवाइस के साथ कभी कैप्चर करना ही नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी अच्छी इंटेंशन क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका दुरुपयोग होगा। अगर आपकी गर्दन है तो कोई ना कोई तो उसको दबाएगा, तो अपनी गर्दन किसी के हाथ में दे क्यों, बुनियादी सवाल ही खड़ा होता है।
1: और सही बात यह है कि देखिए सबसे साफ बात यह है कि पूरी लाइफ फिर लोगों की स्पॉइल हो जाती है,
0: पूरी लाइफ, लोगों की पूरी लाइफ, उनकी मेंटल मेकअप, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाती है, क्योंकि साहब आपने तो कुछ चीज फन में करी और उसका इंपैक्ट आ गया जो आजीवन के तौर पर आ गया, और इमेजिन वो कॉन्टेंट आपके बच्चे देखेंगे, वो कॉन्टेंट आपके परिवार के मित्रगण देखेंगे, तो वो तो आपको एक आजीवन के तौर पर
1: और वो लाइफ लॉन्ग रहने भी वाला है,
0: बिल्कुल।
1: ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, शायद वो सर्वर से डिलीट कराने के लिए आपको फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है,
0: और कभी भी कुछ चीज डिलीट नहीं होती, इस मिथ्या से बाहर निकल जाइए।
1: अच्छा,
0: इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज भूलता है, एक बार आपने इंटरनेट पर कुछ चीज डाल दी तो वो सदैव के लिए वहां रहने वाली है, और कोई ना कोई आदमी जो उस फिराक में है, उस ढूंढ में है, तो कहीं ना कहीं ढूंढ करके आपको आप क्या पहुंच ही जाएगा और इन्फॉर्मेशन ले ही लेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेट को आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें, खास तौर पर ये जानकारी तो बिल्कुल ना शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी के भी हाथ में आएगी, चाहे वो साइबर क्रिमिनल हो या हैकर हो, वो सबसे पहले इस जानकारी को अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर बेच देगा, और फिर एक बार आपका कंटेंट अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर आ गया तो उसमें से बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है,
1: बिल्कुल लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो सकता है। वेल, जाने से पहले सर दो टिप जो आप लोगों को देना चाहें,
0: जाने से पहले केवल दो टिप मैं जो आपको देना चाहूंगा, एक ये, दुनिया बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, इस दौर में जितना आप अपने डेटा को समेट के रख सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, अंधाधुंध लोगों को डेटा बांटने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को, साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाइए, मान के चलिए मुझ पर आक्रमण तो होगा ही, तो इसलिए जब आक्रमण हो तो पैनिक नहीं करना,
1: तो शील्ड हो,
0: इंपॉर्टेंट चीज है कितनी जल्दी आप आक्रमण के बाद पुनः नॉर्मलसी पर आ सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, अच्छे बैकअप्स रखिए, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स रखिए, अपनी अनावश्यक जानकारी इंटरनेट पर डिवाइसेस पर शेयर ना करिए, और अल्टीमेटली आपकी ड्यू डिलिजेंस, आपकी सावधानी ही एकमात्र आपका मूल मंत्र है जो आपको बचाने वाला है। समझ लीजिए कि हम सब लोग आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के वॉर फील्ड के केंद्र बिंदु पर आ चुके हैं, हमें चारों ओर से अटैक होने वाला है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक अच्छा सुरक्षा कवच पहन लीजिए, और वो सुरक्षा कवच है आपकी सावधानी, आपकी सूझबूझ, क्योंकि ये सुरक्षा कवच आपको विभिन्न प्रकार के अटैक्स को रिपेल करने में मदद करेगा।
1: बिल्कुल, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और शेयरिंग इज केयरिंग, ये सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए अप्लाई होती है, बिकॉज आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जो सगे संबंधी हैं वो इस चक्रव्यूह में ना फंसे। वेल, मुझे पता है आप जाने का समय हो गया है, और जब भी मैं जाता हूं आप कहते हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन जाएंगे तभी तो फिर से लौट कर आएंगे। एंड आकाशवाणी पॉडकास्ट, आपका होस्ट, आपका दोस्त साइन आउट कर रहा है अलॉन्ग विद डॉक्टर पवन दुग्गल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी।
0: थैंक यू।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे

0: देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: It is 9:58. We promised you that we'll be back now, and here we are. We are back. We'll play one more song. This is actually a request by Prakash. Before the next teardrop falls, it's a 2-minute piece. This is the way we'll ease ourselves into the show, back into the show. 10 p.m. The Beatles, Sweet Memories, My Energy, maybe. We'll be back then, by then.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल है। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पुराने किताबों की एक अलग ही खुशबू होती है। उनके पन्ने पलटते ही लगता है कि जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार कुछ देर के लिए रोक दी हो। गजलें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। हर बार सुनो तो नए अल्फाज नहीं मिलते, लेकिन उन्हें अल्फाजों का नया मतलब जरूर मिल जाता है। शायद इसीलिए अच्छी महफिल कभी पुरानी नहीं पड़ती। वो हर मुलाकात में अपने आप को एक नया रंग दे देती है।
1: मुकेश जी, जो प्लेबैक सिंगिंग में काफी मकबूल हो चुके थे, वो भी इस गैर फिल्मी म्यूजिक के दौर से बच ना सके और जुमाने को सुनाने के लिए कुछ अशआर चुन ही लिए।

महफिल की शुरुआत हमेशा गजलों से नहीं होती, कभी कभी एक सुकून भरी सांस भी हो जाती है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब इंसान कुछ देर के लिए रुकता है, तब उसे महसूस होता है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होती, रास्ते को महसूस करना भी एक नाम है। इसलिए गजलें जल्दी नहीं करते, वो हमें रोक रोक कर भी आती हैं। ये कहती हैं कि थोड़ी देर अपने साथ बैठ जाओ, एक कप चाय की तरह कुछ लम्हे भी होते हैं, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, बस इतने कि बस दिल को सुकून मिल जाए। अच्छी बात तो यह है कि सुकून खरीदा नहीं जाता, कभी किसी अपने की आवाज से भी मिल जाता है, है ना? ऐसा होता है, कभी किसी पुरानी धुन से और कभी किसी गजल के साथ एक मिसरे से भी। आज की महफिल भी शायद इसी सुकून का नाम है और इसे बनाना भी है।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा, जिसे हम कहते हैं रंगे महफिल। मोहब्बत का सबसे मुश्किल इम्तिहान जुदाई नहीं होता भाई, बल्कि वो दिन होता है जब सामने वाला बदल जाए और आप उसकी पुरानी तस्वीर को ही सच मानते रहें। इंसान बहुत देर तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, उसे लगता है कि शायद कल सब ठीक पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर हर शायद हकीकत नहीं होता और तब गजलें मरहम बनकर लग जाती हैं। नहीं बताइएगा,

हर जख्म दिखाई नहीं देता, कुछ दर्द मुस्कुराहट के पीछे ही रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, और धीरे धीरे जवाब देता है दिल, काश दर्द का कोई एक चेहरा भी होता, शायद तब लोग समझ पाते कि खामोशी भी कितनी अजीब चीज होती है, बहुत थक जाती है। नहीं बताया कीजिए आप लोग कि सच बात है कि नहीं।

हर दौर में इंसान ने अपने आप को, अपने दिल को समझाने की कोशिश की है, लेकिन दिल की फितरत ऐसी है कुछ के हिसाब से नहीं चलता, एहसास से चलता है। कभी छोटी सी बात पर मुस्करा देता है और कभी एक खामोशी भी इसे बेचैन कर देती है। शायद इसीलिए मिर्ज़ा ग़ालिब ने दिल को सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि इंसान का सबसे बड़ी सच्चाई माना है। ग़ालिब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी बहुत कम निकले। हर किसी ने सुना होगा शेर। ये शेर बताता है कि इंसान की हसरतें कभी पूरी नहीं होती, दिल हमेशा कुछ और चाहता रहता है और इसी चाहत के सफर में कभी खुशी मिलती है कभी दर्द। आइए अब मिर्ज़ा ग़ालिब के एक और लाजवाब गजल सुनते हैं, और दिल ही जो कि है, दिल ही तो है ना संगो किश्त।

कभी इंसान लोगों से घिरा होता है, फिर भी दिल को अजीब तन्हाई महसूस होती है। बात सिर्फ किसी भी के साथ होने की नहीं होती, बस बात होती है शख्स कोई यहाँ पर है या चला गया है। महफिल अगर चला गया है तो फिर महफिल बहुत अधूरी सी लगती है। मोहब्बत का सफर भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ जब तक साथ होता है तो दुनिया छोटी लगती है, और जब फासले आ जाते हैं वही दुनिया बहुत बड़ी नजर आने लगती है। शायद इसी एहसास को अल्फाजों में पिरोकर शकील बदायूं ने ऐसी गजल लिखी जो आज भी हर दौर के सुनने वालों को दिल को छू जाती है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज की महफिल हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि आज की गजलों ने आपके दिल को सुकून कुछ लम्हे दे दिए होंगे। मैं हूं ताहिर, आपके दिल का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी इसी वक्त यानी किसी और दिन। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शब खैर। खासतौर पर उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।

नमस्कार, रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल की हर बूंद के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग तथा निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह ने चांदबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो जीरो आर शो में आपका स्वागत है।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, रात्रि के 1 बजे हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हो गए थे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 33 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, करते हैं दिल की बात इन द प्रोग्राम सुहानी रात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक आज सदन की कार्य सूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के सिवा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में नवनिर्मित कोमूर वैली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपा कर रखी गई 5 करोड़ रुपए की कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। आइए सुने कुछ ऐसे नगमे जो भुलाए ना बने।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल की हर बूंद के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक आज सदन की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में नवनिर्मित कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी हुई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। ये थे एफएम मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, आइए सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

कमल जी, आपको मेरे कारण जो कष्ट हुआ है उसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपकी आखिरी कविता मेरे ही जीवन की कहानी है। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या, एक कटी पतंग है।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल की हर बूंद के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक आज सदन की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्यवाही के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी हुई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह ने चानबाम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में तथा राजा मुथु पांडी 65 किलोग्राम भार वर्ग में

रजत पदक जीता। अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 4 पदक जीते हैं। क्रिकेट ने भारत में हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। ये थे FM मुख्य समाचार।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर

आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लूंगी।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

काली अर्धचंद्र माथी शुभ्र गंगा, भाली अर्धचंद्र माथी शुभ्र गंगा, लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म, लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म, भाली अर्धचंद्र माथी शुभ्र गंगा, लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म, लिंपिले सर्वांगा।

0: भाई अर्ध चंद्र माती शुभ्र गंगा लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म लिंपिले सर्वांगा चिता भस्म
1: हर हर शंकर सांब सदा शिव।